ये होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते ही तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप।

दिलीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी आ रही है। साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका याग्निक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फन जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिकेल लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग। और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर। और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

नागिन फिल्म नागिन जो 1954 में पिक्चराइज किया गया है सुनने वालों, और इसमें जो स्टार कास्ट थे प्रदीप कुमार, विजयंती माला, जीवन मुबारक, और गीत हमको सुनाए लता जी, और साथ में देखे तो आशा भोसले जी और हेमंत कुमार जी के आवाज़ में यह सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इस बार है अकेली मत जाइयो फिल्म बैजू भौरा से।

अकेली मत जाइयो। फिल्म का नाम, सिंगर है लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब।

हवा, ये मस्ताना मौसम, जैसे हमने बताया गीत के शुरुआत में, तो लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अकेली मत जाइयो फिल्म का नाम, वही फिल्म अकेली मत जाइयो से।

0: एक सवाल आप करें, एक सवाल मैं करूं।
1: Live vanuit Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
0: जी हाँ, लाइव वनोई देन हाग फाह हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप चुने।

लता और रफ़ी जी ने सुना दी कि कर गए जिसका इंतज़ार, देखो लाई मेरा प्यार। फिल्म में जो स्टार कास्ट थे, राजेंद्र कुमार और जमुना, आप सोचते होंगे मैं तो कह दी फिल्म पर नाम नहीं बताई, तो यहाँ से नाम है फिल्म हमराही, नाम है फिल्म हमराही, नाम है फिल्म हमराही। खुद से वादा कर, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, नहीं रहोगे कदम। खुद से वादा कर, खुद को ही ज़ुबान दे कि नहीं रोकेंगे अपना कदम, जब तक पहुँच नहीं जाता, जब तक पहुंच नहीं जाता मुकाम पर।

कोयल बोले और दुनिया डोले, हमको सुनाए सुने वालों लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी। और उसी फिल्म का नाम सरगम, फिल्म सरगम से हम आपको लेकर चलते हैं वही मशहूर गीत जो यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे। और गीत का बोल है दफली वाले दफली बजा।

बस उधर बेकरारी किस लिए है। बलबीर और मोहम्मद रफी जी ने हम सबको ये सुंदर सा गीत और सुनाए हैं। दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है, यानी कि त्वे फॉर्मख, दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है किंतु स्वयं का कोई विकल्प नहीं है। ये बेंत अलेन एन एन एन पर्सोन, एन यूनिक पर्सोन, इसलिए सबसे अधिक स्वयं को स्वस्थ व प्रसन्न रखें। अपने आप को खसोंद एन खलुक रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।

ये गोटेदार लहंगा जो हमको गाकर और सुना दी है वो है रफ़ी जी और साथ दे रही थी आशा भोसले जी ने।

थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।

फिल्म मिलन से निकाला गया सुनने वालों ये सुंदर सा गीत जो लता जी फरमाई कि तो है सवरिया ना ही खबरिया। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, और मेहनत करने से, जी हाँ, और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है।

मित्रों, इस बोल के द्वारा जो बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं, हम आशा यही रखते हैं कि आप मुझ पर नाराज ना हो, क्योंकि आज के जमाना का ये हकीकत है। तो इसको जरूर ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। अगर आप इस तरह का है तो जरूर आप पर लागू है। सुनिए और पहचानिए अपने

मित्रों, जरूरी नहीं है कि मुझे सभी लोग प्यार करें। मेरे लिए जो वादा महत्वपूर्ण है वो है सही लोगों द्वारा प्यार पाना। मित्रों, मैं आपको हर दिन के लिए एक फूल और एक मैत्रीपूर्ण शब्द, एक प्रसन्न मुस्कान और आपके कंधों के चारों ओर एक हाथ और एक आंख मारने की कामना करता हूं, जो काम आए। लेकिन सबसे ऊपर एक अंगूठा, यही आशा से कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मित्रों, आपके आंसुओं के लिए एक अलिंगन यानि कुनिफल, आपके लिए एक अलिंगन प्यार और आराम से भरा एक अलिंगन, क्योंकि कभी कभी ये जरूरी होता है मुश्किल की घड़ियों में एक झप्पी, एक अलिंगन, एक कुनिफल इंसान को जरूरी पड़ जाता है। मित्रों।

सज्जनों, उस परिवार के बारे में चिंता ना करें जो आपको अनदेखा करते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे जाने दें और उन लोगों से प्यार करें जो हमेशा आपके लिए मौजूद है, तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। मित्रों, और जो परिवार या रिश्तेदार मेरे लिए गलत विचार रखते हैं, उन्हें मैं अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता। परिवार एक दूसरे की मदद और सुरक्षा के लिए बना है, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं, जैसे आप करते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहना, अच्छाई करते रहो। मित्रों, ये आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी साबित होगा।

मित्रों, यदि आप अतीत को पीछे नहीं छोड़ते हैं तो ये आपके भविष्य के उस प्रेम को नष्ट कर देगा जो आज आपको देना था, न कि जो कल था, वो तो बीत गया बीत गया। मैं अब वो नहीं रहा जो मैं था, जो सब कुछ किया करता था, जो दूसरों को मुझसे अपेक्षा थी। अब मैं वही करता हूँ जो मैं खुद की सुनना चाहता हूँ और अपने दिल की सुनता हूँ। तो अगर आप मुझसे कहें कि मैं बदल गया हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैंने उस तरह जीना बंद कर दिया है जैसे आप चाहते थे। मित्रों, जैसे आप चाहते थे इस तरह आपको भी जीना चाहिए।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें हाँ कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा, रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जया किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवा धाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेरा में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेम्पल

के नाम से जानते हैं, वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है, जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है, संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण, जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज़्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अ ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, आपके सेवा में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती मीनाक्षी जी, जो अपने ओर से भी संदेश रखने वाले हैं, और अभी हम कनेक्ट होने वाले हैं अनुराधा जी से। अनुराधा जी जो दिल्ली से हम सबके साथ अभी कनेक्ट होने वाले हैं, तो अनुराधा जी के से पहले मीनाक्षी जी जो अपना संदेश रखने वाले हैं, तो मीनाक्षी जी आपका माइक हम ऑन कर देता हूँ और
1: जी धन्यवाद,
0: अपना संदेश को रखिए।
1: मैं एक कहानी के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि एक प्रश्न उठता है, जीवन मृत्यु दोनों चलते रहते हैं, तो क्या जीवन ही चलता रहे और मृत्यु ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मृत्यु आवश्यक है। तो हम हर एक कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है और ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। इसके लिए हम एक कहानी में बताना चाहती हूँ, उसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि मृत्यु भी आवश्यक है। एक बार एक राजा एक संत के पास गया जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो दो पर्वत हैं उन्हें पार कर लीजिए, वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे।
0: तो मीनाक्षी जी, अब इसमें थोड़ा मैं और प्रश्न थोड़ा अब और खौलने लगा अंदर से ना, कि आप वहाँ एक झील है अभी आपने कहा, उसे हम हिंदी में कैसे कह सकते हैं, झील बोले तो?
1: झील वैसे तो हिंदी ही शब्द है।
0: हाँ, पर
1: तालाब,
0: तालाब
1: हाँ।
0: यहाँ यानी कि जिसमें जल
1: जल है, वाटर बॉडी।
0: हाँ,
1: तो जब उसने कहा ना कि आप मुझे बताइए, तो संत ने कहा, आपके सामने जो दो पर्वत हैं उन्हें पार कर कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, तालाब मिलेगा, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्हें करहाने की आवाज आई। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूँ तो। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार कीजिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे, उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जंगल में कौन झगड़ सकता है?
0: अरे, अब समस्या थोड़ा गर्म हो गया।
1: जी जी, बहुत
0: समस्या थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि वो पीला फल तो जो आपने कहा कि अमरता यानी कि अमर होने के बावजूद वो अब जवान भी होना चाहता था
1: जी,
0: तो शांता जी क्यों ना पिटारा से एक गीत पहले सुना देते हैं।
1: बिल्कुल, इस वक्त बहुत जरूरत है गीत की।
0: गीत की बहुत जरूरत हो गया मेरे ख्याल से। तो हमारे सुनने वालों, ये पीला फल वाला संदेश अभी आप सुनेंगे, पर एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं पहले।

0: मीनाक्षी ना, मीनाक्षी जी
1: जी,
0: आप झील के बारे में बात करते हैं तो झील होता है, तालाब होता है और झरना होता है
1: जी।
0: इसमें अंतर क्या है? सब तो पानी पानी है पर उसमें फर्क तो होगा ना।
1: ये अलग अलग प्रकार की वाटर बॉडीज हैं
0: जी।
1: झरना पहाड़ों से नीचे गिरता है।
0: अच्छा, वाटरफॉल
1: से नीचे गिरता है, उसको झरना कहते हैं।
0: वाटरफॉल, हाँ
1: वाटरफॉल
0: हाँ।
1: और झील जनरली पहाड़ों में या प्लेन में भी पाई जाती है
0: हाँ।
1: और बोटिंग वगैरह करते हैं उसमें।
0: अच्छा,
1: और तालाब
0: हाँ।
1: तो एक वाटर बॉडी है जो कि जनरली जैसे गांव वगैरह में अमूमन देखने को मिल जाता है, जिसका पानी का उसकी सफाई इतनी नहीं हो सकती है, तो उसको जनरल जैसे गांव के जो
0: हाँ तालाब जिसमें
1: वगैरह होते हैं वो उसमें नहा लेते हैं।
0: हाँ, जैसे तालाब में वो
1: हाँ,
0: लोटस ब्लूम होता है ना
1: हाँ,
0: उसमें वो तालाब कहते हैं। और झरना ना, झरना तो वाटरफॉल है। और क्वा जिसमें रिवर कहते हैं, रिवर
1: हाँ
0: हाँ,
1: नदी तो एक अलग चीज है
0: जी।
1: नदी तो काफी लंबी होती है, समुद्र में जाके मिलती है
0: जी,
1: तो नदी तो बहुत लंबी है,
0: गंगा नदी
1: जैसे गंगा नदी।
2: तो शांता जी, अब आपने छेड़ ही दिया है तो थोड़ा सा और इस पे थोड़ा दृष्टांत डालते हैं। क्या आपको लगता है कि हॉलैंड में ऐसा स्थान है जहाँ पर कमल का फूल जो तालाब में मिलेगा?
0: अब तो होता है या हमारा क्या करते हैं, हमारा हॉलैंड के लोग जो है जो प्लांट के अंदर के स्तुति करता है ना, ये अन्य देश से जाकर पौधा को लेकर आता है। और यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर वो सब कैसे बोले, वो सब
1: कल्टीवेट करते हैं उसको
0: जी मुझे हिंदी शब्द नहीं पता, तो उसके अनुसार देखते हैं और उसके बाद में सब यहाँ तालाब में भी डाल देते हैं, रिवर में भी डाल देते हैं। तो हम देखिए अभी देखे ना, अभी इस मौसम जो शुरू हो जाएगा, सोमर जो आएगा ना हर साल, तो देखना ये नदी में वो कैसे कहते हैं लोटस जो है, कमल के फूल, वो असली वाला नहीं बल जो छोटा छोटा रोस वाला होता है, सफेद वाला पीला सा, इसे वो सब होता है।
1: हाँ, मैंने खुद देखा है,
0: देखो
1: यहाँ पे जो कैनाल्स हैं
0: हाँ।
1: तो एक बार मैं क्राइनस्टीन जा रही थी कार से
0: जी,
1: तो मैंने देखा है कैनाल में बड़े कमल के फूल थे।
0: देखो
1: जी
0: हाँ,
1: हॉलैंड में कमल के फूल देखने को मिलते हैं।
2: मैं इस पे थोड़ा सा और जोर देना चाहता हूँ, एक शहर है यहाँ वेटफेन कहलाते है ना, वेटफेन कहलाते हैं, वो काफ़ी दूर है डेन हाग से, और वो एक बड़ा गहरा सा और तालाब खोद करके वो शहर को बनाया गया है, और वहाँ वो जो तालाब है उसमें आपको बिल्कुल ये रोज के कैसे बोल रहे हैं रंग गुलाबी कमल के फूल वहाँ हैं हॉलैंड में, तो अच्छा लगता है देखने का और बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे यहाँ तक भी कमल का फूल है।
1: और इसके साथ वैसे तो हॉलैंड फूलों का देश है ही है,
2: फूलों का देश है ही है,
1: यहाँ तो फूलों को आप देखते रहिए
2: हाँ, जाओ
1: खुश होते रहिए,
2: क्योंकि रंग
1: बिरंगे फूल बहुत मजा देते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ, दुनिया के हर एक प्रांत से देखो हाँ, लोग आते हैं यहाँ पर वो फूल देखने को
0: हाँ। और देखो ना ये केकनहॉफ जो हम कहते हैं ना सिलसिला पिक्चर यहाँ बना है
1: हाँ,
0: वो केकनहॉफ का जो तेलप है ना
1: हाँ,
0: उसको उनका बीच जो है वो तुर्कैय से लाया गया
1: हाँ,
0: हाँ।
1: ये कहाँ आ गए हम
0: जी,
1: गाना यही था अमिताभ बच्चन और रेखा जी के ऊपर फिल्म आया गया था
0: जी, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए
1: हाँ। बड़ा मजा आता है वहाँ पर देख के उस पिक्चर हाँ।
2: पर और भी यहाँ का फूलों का फिल्म किया गया है, रूप के रानी और चोरों का राजा जो बनाया गया, जिसमें श्रीदेवी काम किए थे अनिल कपूर जी के साथ, और जो यहाँ डनहाग में वेस्टर ब्रुक पार्क ये बिल्कुल पास है स्केफेनिंग के पास, और वहाँ पर शूटिंग हुआ था, कोर हाउस में कुछ शूटिंग हुआ था और वेस्टर ब्रुक पार्क में वहाँ पर शूटिंग किया गया था। तो कहने के तात्पर्य यह है कि अभी जो संदेश आप सुनाने वाले हैं, जो पीला फल हम सबको मिलने वाले, जो हमें ना सिर्फ अमर करने वाला पर हमारा युवा को दोबारा लाने वाले जो शायद इस समय घर पे बैठे हुए हैं और ये सोच रहे होंगे कि भाई अब समय बीत गया, कितना समय बीत गया, क्यों ना हमारा युवा आ जाए। तो अभी आपके लिए देखते हैं कि मीनाक्षी जी क्या सुनाने वाले हैं।
1: अभी मेरी कहानी
2: पूरा नहीं हुआ,
1: नहीं नहीं,
2: क्योंकि आपने कहानी अब वहां ला करके और हम लोग गीत की ओर बढ़ गए थे, पर संदेश आगे बढ़ाइए मीनाक्षी जी।
1: जी मैं बढ़ाती हूँ आगे। और तो इसके बाद जब उसने कहा कि पीले फल लगे होंगे, उन फलों में एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। राजा ने चार जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा तुम क्यों झगड़ रहे हो। उनमें से एक बोला मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है, वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी वह जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूंगा। उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब आप अपने चलते समय नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो वह ध्यानमय नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। और जब आप घर में नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। मृत्यु बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहे।
2: इस बात को समझ आ गया कि वो लालच मुझे नहीं करना चाहिए
1: जी।
2: कि वो पीला फल खाने से, शांता जी आपने तो तैयार हो गए होंगे कि वो पीला फल मिल जाता तो मेरा युवा आ जाता, पर ऐसा भी ये सुनने वालों भी इस बात को सुन करके ये संदेश जो बड़ा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात रखे आपने, क्योंकि मृत्यु जीवन है तो मृत्यु भी है। और कौन सा गीत आप सुनाने वाले हो शांता जी?
0: ये जीवन है,
2: ये जीवन है।
0: हाँ।
2: तो सुन लेते हैं कुछ।
0: हाँ माँ मीनाक्षी जी, वाकई में उम्र ढलते ही
1: जी।
0: लोग चाहते हैं जवान रहने।
1: हाँ।
0: रहना चाहते हैं।
1: हाँ।
0: काफी लोग के हमने भी देखे और सुने भी ऐसे,
1: लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है।
0: बिल्कुल,
1: वो उनके सोचने से क्या ये थोड़ी हो सकता है कि वो जवान हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो तो गया। अब आप ये सोचें कि जो कल मैं थी वो आज हूँ, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं कल जो बीता हुआ कल है उसमें तो अब नहीं जा सकती।
0: बिल्कुल,
1: अब तो मैं आने वाले कल को ही देख सकती हूँ, तो ये तो प्रकृति का नियम है।
0: हाँ, और काफी लोग बहुत पछताते हैं।
1: हाँ।
0: कि भले कि मैं ये कर लेती या वो कर लेती, वो तो समय गए।
1: इसीलिए कहते हैं कि समय पर हमेशा अलर्ट और विजिलेंट रहना चाहिए, समय को पकड़ के रखना चाहिए, जिससे, क्योंकि समय दुनिया में सबसे जो महंगी वस्तु है वो है समय। एक बार गया
0: तो गया।
1: वापस नहीं आया।
0: हाँ।
1: इसलिए समय का हर वक्त हमको ध्यान रखते हुए रहना, और आगे बढ़ना चाहिए, समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
2: कहते हैं ना कि बगैर कुछ करे एक ही चीज आगे बढ़ते जाते हैं
1: जी,
0: वो है उम्र,
2: वो है उम्र। तो उस पे भी बबली जी आपने हाथ उठाए थे, कुछ कहने वाले हैं क्योंकि पीला फल खाने वाले हैं क्या?
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ, जैसे अभी मीनाक्षी जी ने बताया, शांता जी ने बताया, आपने बताया कि जन्म के साथ मृत्यु भी है और वो तो प्रकृति का नियम है। और लोग सब कुछ कर सकते हैं, अगर बाल सफ़ेद हो गए काले कर लो, दांत निकल गए नकली लगा लो, आंखें कमज़ोर हो गई चश्मा पहन लो, हाथ पैर अगर नहीं है वो भी नकली आजकल बन जाते हैं, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो तो आनी है और जरूर आएगी,
2: वो तो जरूर आएंगे। तो क्यों ना शांता जी वही गीत जो आपने चुन करके रखे सुना देते हैं सभी सुनने वालों को
0: जी किशोर।
1: और ये गीत बिल्कुल जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं उससे एकदम मेल खाता है, मुझे बिल्कुल लगता है कि दर्शकों को ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। ये जीवन है
0: हाँ, किशोर दा के
1: बहुत ही बढ़िया गीत।

0: ये जीवन है, ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराधा जी जो दिल्ली से और हमारे साथ जुड़े हुए। तो अनुराधा जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आपको नमन करते हुए आप अपना संदेश को रखिए।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मंगलमय होंगे। बहुत दिन हो गए आपको मैंने कोई कथा नहीं सुनाई। चलिए एक आज कहानी हो जाए। देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आज हमने गरीबों को भोजन कराया, आज हमने ये बांटा, या आज हमने किसी को, किसी गरीब को दान दिया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित मैं आप सबको एक अविस्मरणीय कथा सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो, मेरी एक विनती उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिन बाद उसे वह साधु पुनः मिला। लड़कड़हारे ने उसे अपनी विनती का स्मरण कराया, उनको याद दिलाया कि आपसे मैंने पूछा था कुछ भगवान से पूछने के लिए, तो आपने क्या पूछा। साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग में पूरे जीवन के लिए केवल 5 बोरी अनाज है, इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं जिससे वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। ऐसे कहकर साधु ने उसको बता दिया। अब समय बीता, साधु उस लड़कहारे को पुनः मिला तो फिर से लकड़हारे ने कहा, हे ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो तो मेरी यह विनती उन तक और पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भर पेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लड़कहारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। अब ये कहकर अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा? संजय जी, आपको क्या लगता है? चलिए मैं कहानी में आगे बढ़ूंगी, पर क्यों ना एक गीत हो जाए और उसके बाद जानते हैं कि क्या हुआ।
0: अनुराधा जी, मेरा तो ये है कि आप कहानी को आगे सुनाइए, पर क्यों ना लकड़हारा से पहले जो वृतांत। मीनाक्षी जी, आप भी कुछ कहने वाले हो? लकड़हारा के वृतांत जो
2: हाँ नहीं, उसमें जो अनुराधा जी ये जो कहानी सुना रही हैं उसमें हम बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है।
0: हाँ, क्योंकि वही हाल हो रहा है ना, वो पीला आम के तरह कि क्या होने वाला है अभी।
2: जी जी, और इन्होंने बहुत हमारे माइंड में वो एक बना दिया है कि क्या होगा क्या होगा। मैं इसमें सोच रही हूँ बैठ के कि क्या हुआ होगा, लेकिन चाहती हूँ कि साथ में गीत का भी आनंद लूँ, तो इसलिए मैं पहले गीत भी सुन लूं और फिर अनुराधा जी तो है ही हैं हमें क्या हुआ होगा बाद में बताने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों ना गरीबों को सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा।
2: तुम एक पैसा दोगे
0: और कितना मिलेगा? 10 लाख देंगे।
2: जी,
0: तो सुनो वालों, चलते हैं उस गीत की ओर।

0: गरीबों के सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, फिल्म का नाम जो 10 लाख, फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और शांता जी, ये एक्टर का नाम क्या है?
1: संजय खान।
0: ओ मेरा नौरासी भाई।
1: हाँ।
0: संजय खान शायद मेरा पिता ने ये फिल्म देख करके और नाम, क्योंकि कितने ऐसा हुआ है ना
2: जी, जी बिल्कुल।
0: लोग
1: मीनाक्षी जी आपके नाम भी ऐसी धरा।
2: हाँ मेरा भी उसकी कहानी है।

0: अधिकांशतः नाम देवियों के ऊपर ही होते हैं।
1: बात सही है।
0: हाँ, काफी कुछ देवियों के नाम पर ही होते हैं, जैसे राधा, सीता, शांता।
2: हाँ, ऐसा ही हो गया हुआ होगा। शांता जी, आपका नाम भी शांता रखा गया, जरूर कुछ सोच के आपका माता पिता ने रखे होंगे ना।
1: पता नहीं, होते तो पूछते। लोग कहते हैं शांता राम जी का बहन का भी नाम है।
0: जी जी जी जी। हाँ। जिसका लोगों को बहुत कम पता है, चार भाइयों में एक बहन थी सबसे बड़ी।
1: हाँ।
0: जी जी, शांता।
1: और वही के पति जो है, शांता का पति, वही अग्नि में से वो खीर निकलवाया था ना।
0: हाँ, अग्नि से कहानी।
1: हाँ, वो तो बहुत सारे कहानी है।
0: हाँ।
1: हाँ।
2: तो दोस्तों सुनने वालों, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम लेकर के, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराधा जी, अपना संदेश जो हम सबको सुना रहे। तो अनुराधा जी, आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
3: तो चलिए आगे पता लगाते हैं कि कहानी में क्या हुआ। तो अब जब साधु ने कुछ ऐसा करा कि लकड़हारे के घर में इतना सारा अनाज पहुंच गया, तो लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी विनती स्वीकार कर उसे उसका सारा हिस्सा अनाज का भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर साधुओं को, गौ को और जितनी गायें थी और गरीबों को और जितने भी उसे कोई जो भूखा इंसान नजर आया उसको उसने खिला दिया और स्वयं भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। अब ये उस बड़ा आश्चर्य हो गया, उसने पुनः उन सभी को खिला दिया। उसने देखा कि अनाज फिर से मेरे इतना जितना मैंने खत्म करा फिर से उतना अनाज आ गया, तो उसने फिर से वही अनाज लेकर जितने लोग थे जरूरतमंद सबको खाना खिलाया, सबको खिलाकर खिला दिया। फिर परंतु उसका भंडार फिर से भर गया। अब ये सिलसिला, ये जो वो खिलाता सबको, उसका भंडार खाली होना चाहिए था, पर वो भंडार खाने का फिर से भर जाता, वो फिर से खिलाता, वो फिर से भर जाता। यह सिलसिला प्रतिदिन चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह जरूरतमंदों को भोजन कराने में व्यस्त रहने लगा। अब उसने लकड़ी काटना छोड़कर वो जितने जो भूखे प्यासे जितने लोग थे जिनको भी भोजन की, वो सबको वो भोजन उसने भोजन खिलाने का कार्य सबको करने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु पुनः लकड़हारे को मिला, तो लकड़हारे ने उनसे साधु जी से पूछा, हे ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। तो वो उनसे जानना चाहता था कि ये क्या है कि आपने तो कहा था मेरे पूरे जीवन भर में ही थोड़े से मतलब 5 बोरी रहेगा, पर ये तो मेरे प्रतिदिन हर दिन मेरे घर में 5 बोरी अनाज आ जाता है, तो इसका क्या ये राज है, क्या ये क्या है? तो मैं आपको राज बताना चाहूंगी, पर चलिए संजय जी एक जल्दी से एक सुंदर सा गीत हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं।

राधा जी आप फिर वही किया, रास बस रास ही रह गया और हम सबको इंतजार करवा रहे हो। चलो चलते हैं। शांता जी एक सुंदर सा गीत जो चुन करके रख दिए है और उसके बाद में रास का खुलासा जरूर होना है, तो हम सुंदर सा गीत की ओर बढ़ रहे वाले हैं दोस्तों।

0: सभी को गले लगाना मोहब्बत में लुट जाना।
1: सभी को गले लगाना और मोहब्बत में लुट जाना, ये सुंदर सा गीत निकाला गया, कौन सा फिल्म है शांता जी?
2: अधिकार
1: फिल्म, जिसमें एक्टर प्राण एक बड़ा बेहतरीन एक्टर होते थे और अपने समय पे। दोस्तों, जो कार्यक्रम में अनुराधा जी हम सब के इंतज़ार करवा रहे हैं, तो क्यों ना वो रास की ओर बढ़ते हैं। तो अनुराधा जी, हम सबको वो रास जो आप अभी तलक खुलासा नहीं हुआ है उसके, और संदेश जो हम सब के लिए आप रखने वाले हैं, सुनाइए।
3: तो चलें और पता लगाएं कि जब लकड़हारे ने ऋषिवर से पूछा कि ऐसा क्या है कि रोज अब मेरे घर में 5 बोरी अनाज आ जाता है, तो साधु ने लकड़हारे को समझाया, तुमने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज साधुओं को, गांवों को, गाय जीती हैं और गरीबों को और भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उनके हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। तो कथासार का ये समझिए कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया, तो ये हम बहुत गलत समझते हैं और सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। क्योंकि हम तो बस एक जरिया है जो हम दे पाते हैं, पर देने वाला तो ऊपर वाला ही हमारे हाथ में इतना देता है कि हम दूसरों को दे सकें। देखिए, दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते हम देते या दिलाते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने दिलाया, और वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। आपको केवल परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है, हम तो एक जरिया है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए भगवान ऊपर वाला हमसे दिलवाता है, ताकि उन तक उनकी जरूरतों जितनी और लोगों की जरूरतें हैं पहुंचाने के लिए, जो जरूरतमंद है उनकी हम मदद कर सकें। तो निमित्त होने का घमंड कैसा, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही ये सब कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं मैंने दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये मैं जब हम बोलते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मेरे को भी जो देने वाला है वो ऊपर वाला ही है, और वो चाहे तो हमें, हम खाली एक जरिया हैं, तो हमें हमेशा भगवान का, ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए कि हम ऐसे, हमें वो ऐसा समझते हैं और हमें ऐसा, हमें इतनी मान्यता मिलती है कि हम दूसरे को हमारे जरिए हम किसी की मदद कर सकते हैं, पर हम नहीं कर रहे, वो ऊपर वाला ही कर रहा है। देखिए, बड़ा सुंदर कहा है, दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, नाथ आकर द्वार पे दूर करे संताप। तो ये बहुत सुंदर कहा है कि हम जब दान देते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं, और सब दान देने पर जो दुख दूर हो जाते हैं, दुख दूर होने से होके सब पाप खत्म हो जाते हैं, और नात आकर हमारे भगवान हमारे ही घर आते हैं और हमारी सब दिक्कतें हमारी सब वो खत्म कर देते हैं। तो ऊपर वाला ही जो है हमें उसका नाम लेना चाहिए और हमें हमेशा कृतज्ञ और रहना चाहिए कि भगवान हमारे हाथों से ही दान दक्षिणा कराते हैं, ये हमारे हाथ पर नहीं है, ऊपर वाले का है। चलिए इसी कहानी के साथ आगे बढ़ा जाए और संजय जी एक और गीत हो जाए।
1: जरूर अनुराधा जी, एक और गीत की ओर बढ़ेंगे। इतना सुंदर संदेश जो आपने रखे और जो रास देखो क्या था ना, तो अभी टाइम तो थोड़ा जल्दी है, पर बबली जी आप क्या सुनाने वाले हैं?

भारत के एक महान सम्राट हुए हैं जिनका नाम है अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जानते लोग उनको। सम्राट अशोक, पिताजी का नाम बिंदुसर, माताजी का नाम सुभद्राणी। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णमयी काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थे, जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, मानव पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर यानी हॉस्पिटल खोले गए, पशुओं को मारना बंद कर दिया गया, ऐसे महान सम्राट अशोक जिनकी जयंती उनकी अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, ना ही कोई छुट्टी घोषित की जाती है।

मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हैं तो उसके लिए घमंड मत करिए, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग इस कार्य को कर सकते हैं लेकिन ईश्वर ने आपको ही चुना है। मैं आशा करती हूँ कि आज की बातें आपको पसंद आई होंगी और अपने जीवन में भी आप लोगों की मदद करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अनुराधा का नमस्कार।

सावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोतागणों को मेरा यानी राजेंद्र सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामना। जो आपने आज संदेश सुना है भगवान बुद्ध का, उसको हम अमल में लाते हुए यानी अपने जीवन में उतारते हुए इसी प्रकार से हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, शुभ दिन, शुभ रात्रि, हर हर शंभु।

0: दीवाना।
1: शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, दो गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है।

0: तड़प।
1: दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।
0: लड़ी है तुमसे निगाह तड़प रहा।
1: आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए हमारे मास्टर जी भारत से राजेंद्र सिंह जी, हमारे कुलेखा साथी अनुराधा चंद्र जी, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। स्टूडियो में उपस्थित है मीनाक्षी जी और शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। मैं हूं आपका सेवक संजय, यही आशा लेकर कि आपको जरूर कुछ अच्छा लगे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने भी ये कहा है, कहा है कि भाई मिलते रहना तो जिंदा रहेंगे।

तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से श्रीकाल है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज की देश विदेश की समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम सुरीनाम नाल और देश के समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे। समाचार कभी कभी मीठे है, कभी कभी खट्टे है, और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है हमारी यारो। हम तुरंत चलते हैं और कहां चलते हैं, वाटरकान सुरीनाम की ओर। हमारी जनता सुरीनाम में भैया मुसीबत एक अभी नहीं रुकता है तो दूसरा मुसीबत आ जाता है, दूसरा अभी नहीं उपलोसद होता है तो तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो मुसीबत के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हमारे देश पे बस छा ही रहती है हमारे जनता। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये भैया, बारिश वहाँ पर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बूढ़ा सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है भैया। आदमी लोग को हम जिस सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो आदमी लोग के हमारे जनता के घर में पानी चल गया है। लेडन देखो, वनिका देखो भैया, और परमारिबो सेल्फ इस ओंदर वाटर हील माल ब्लॉक मैं से। और जनता लोन के हम काम बोली बहुत दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन तो पानी दोस्तों, साथे साथ पानी के साथ में वहाँ पर भैया स्टॉकिंग होता है। तो राजा अयोध्या भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, जुड़ गए हैं। तो राजा साहब आपके राजा साहेब आपको हम यहाँ से बहुत दुलार और प्यार देखते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक के माध्यम से धर्मेंद्र श्री भी आ गया है। तो धर्मेंद्र, बारिश के मौसम लंगडाम पेना सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना खाली बारिश भैया, स्टॉकिंग सुरीनाम में डेमोस्ट्रेशन के तरह भैया, स्कूल के जितना यूफ्राउ मिस्टर रहा उस सब स्टॉकिंग कर ले रहा, कारण कि उस सबके पैसा ना फरहो करत रहा था। अब पैसा मिलल है तो स्कूलिया अब शुरू करी, इधर जब स्कूल शुरू भेल है तब शुरू करी से पुलिस स्टॉकिंग मांगे करे भैया, डेमोस्ट्रेट करे मांगे हैं, स्टॉकिंग मांगे करे, ओहू सब मांगे, अपन लोन्स फॉर हुकिंग मांगे हैं। अब ऊना शुरू भैले भैया, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो सुरीनाम के है अब ऊ सब मांगे हैं आक्सी करे भैया। यहाँ पर लिखा है पर्सनल सेंट्रल बैंक फुट आक्सी ना एड ब्लाई फॉर रियाक्सी फंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रियाक्सी ना दे ची सब मांगे आक्सी करे। और सेंट्रल बैंक भैया जहाँ पे हम लोग के पूरा सुरीनाम के खजांची है, वही सेंट्रल बैंक के त्रिक लूटे रहा, हुफ्द्राट लूटे रहा, सुरीनाम से पोस्पार भंग के क्रोमो लूटे रहा। तो हम बोले तरी से कभी कभी आप लोग को बता दी कि चलो के याद रहे, ना भूलियो जा कि के कौची करी से हम लोग के देश में। तो वही सेंट्रल बैंक बातचीत हो रहा है राजा साहेब। तो अब सेंट्रल बैंक सुरीनाम के 5 तारीख यूनी 2020 तक के सेंट्रल बैंक के कम करतन जो है 8:30 बजे सब बैलकार आए लेगो प्लेंचे पे, और फंड बैंक के प्लेंचप आए ले और सब हुआ पे अब्बा, और बोले हैगा आन दाख फ्राग फॉर सोरखन फ्राखन सिनियाल इन फन मेड वर्कर्स ओवर द हेड्स इन द फिंसी है इसके बारे में यहाँ जा रहा है। और बोले हेड बस्तीर नुम द एड ब्लाइफ एंड फन रिएक्सी टेलर्स टेलन एंड सेक द ऑन्टविकलिंग नो लेटन द ब्लाइफ एंड फॉलखन।
तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम बोली 5 तारीख यूनी हिंदुस्तान से एमी खराची के बारे में होंद्रियन फेफ तक यार 153। हाँ होंद्रियन फेफ तक यार हो गया है सूरीनाम देश में बहुत बहुत यानी कि अन अक्तिफिताइते है। यहाँ दनहाक में भी अक्तिफिताइते रहा हमार प्लेन पे म्यूजिक बजल है और याद भइल है हमारे जो बाब दादा पूर्व जो 5 तारीख यूनिक के कॉन्ट्रैक्ट और बेदस जो लाला रुख पे नहीं अख्तिन होंदे द्रियन सीफन तक में सूरीनाम में गईल है। तो वहाँ के यानी 5 तारीख यूनिक के उसको याद करते हैं होंदे द्रियन फाइव तक यार हो गया है। तो बताओ द और खान सियासी वेस एरोप द इस्ते हिंदुस्तान से एमी खराची जो रहा बोले हैगा ऑन बेरिंग इन ऑन टेकर है द uitdaging van een belangrijke bijdrage en hebben geleverd aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling in ons land Suriname. Mensen door kuske काम करे के discipline रहा सबके doorzetters vermogen रहा तो जितना अभी हमारे औदरे है आप लोग को बाप दादा हमार तो नानी रहा मेरे ख्याल से नानी नाना भारत देश से आयल हा उसको हम नहीं जानते हैं दोस्तों। तो ये सब तो भारत देश के रहा तो बताए गए रे बाबा माई मोन्यूमेंटल लगे सब गईल है न्यू आम्स्टरडम कमवेन में सरमक्का खरोडिंगर पे गईल है निकेरी में सब भी गईल है और वहाँ पर सब जाकर और वहाँ पर हरदाह कर लेबा हम लोग के एमी खराची के बारे में इसके गीत अभी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारी जनता हम और आगे चलते हैं सूरीनाम के ओर। हाँ तो आप लोग जानो हैं ओवा एस के बोले मिनिस्टर मेलफिंग बोवा बैतलांस साका के बोले हैं का ओवा एस में जो सेक्रेटारस जनरल हम लोग के अल्बर्ट रामदेव रहा पहले फे हपी के तहत पे वो रहा मिनिस्टर फन बैतलांस साका के उचल गए फिर ओवा एस के सेक्रेटारस से बड़कवा हुआ के भैया। तो बताई गई है कि वहां पर बोले उकर बारे में अंदर सुख होवेगा फोकस भविष्यवाण वक्त रखेरिंग इज द आउटकम्सन फॉर अ मोगलक अंदर सुख अफ फॉर दैट डेफिनेटिव स्टैंडपिट वर्क नोमन द बाउ फॉलो उन खाली अगोरे है कि कब ये रमिया के बारे में छानबीन होवे। तो बतावे है मिनिस्टर बोले बनाद्र करी दैट नीट इन सूरीनाम इज ऑन फर्स्ट सेल एंड वाज द फेटलक वारहेट इज इन द क्वेस्टी फॉलकस हेम साले इवेंचुअल अंडरसुक मुतर ऑफ वेसन ई है रामदीन के बारे में अंडरसुक हुए ओवा एस में बताई गई है वीस एरोप द रिक्वेस्टी ओक अंडर और दिस को वो तेरे में से रेसेंसी फरकादरिंग। तो हम बोले छोटा रूप में इसको हम बता दे भैया बहुत घींचा तानी असेंबली में हुए है तो लोग जाने हैं स्ट्रफ रखतलक जो उनसे बन मांगे हैं ओवा एम और ओ एम पठाई से गा काने के अने दे एना में के हम लोग के माख है फरोरदेल करके ऑंडर सुख करके बारे में बेकर बारे में बराइट हम आप लोग को बताएंगे हमारे जनता की तोरिया कैसे हैं। तो यहाँ भी एनडीपी का बोले है फरहाल फन हु वे सामन सूरीनाम वर्धन हिंदुस्तान से मिखराची के बोले है अनिव हुफ्त के नखफसीदनेस तो ये भी एनडीपी भी एकर बारे में बतावे है दोस्तों। साथ साथ हम चलते हैं और चलते हैं मेलक ब्लास्टिंग लंद भैया हम लोग के ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा भरे के परे है यहाँ पर नीदरलैंड में। तो के बोले है ब्लास्टिंग कु भैया हाँ गाई ब्लास्टिंग कु के बारे में यहाँ पे

हमारी जनता, तो गीता बिहारी आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में गीता जी। तो हमारे जनता, हम और जा आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर। तो बैंक के बारे में तो अभी आप लोग को हम बताए थे, सेंट्रल बैंक में क्या हुआ क्या ना हुआ। तो साथ ही साथ और समाचार यहां पर है दोस्तों, जो आप लोग को हम जरूर बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं होता है हमारे सूरीनाम में। अब देखो भाई, यहां पर बताए गए हैं रोफ जो है, चोरी चपाटी बहुत ज्यादा होता है देश में, एकर बारे में दयाना में सब खोज कर ले हैं और बोले हैं सिपाही के घर में से, सिपाही के पुलिसी ब्यूरो में से इतना इतना चीज चोरी हो गए। और आगे इंस्पेक्टर के गए ऑन द सुक करे, पीछे सिपाही के घर, सब इतना ब्यूरो के बीच में से कानी कितना दे, यानी कि क्विक चोरी हो गए भैया। कितना क्विक चोरी हुई के देशवा में से, ये बड़ी बहुत आफत के बात है कि जोन अनमिया जहां पे सोचियो हमारे चीज से फैल है, बस वही में से चोरी है चोरी है। तो सिपाही के मीडिया वर्क से भैल है कि ना भैल है भैया, ये तो 100% है। सिपाही यहां पे 24 घंटा रे बड़का कंटेनर में भैया, उतना ढेर क्विक चोरी हुई गई, एक बारे में दे आराम है सब खोज बहुत ज्यादा कर ले रहा। और यहां टोनी इसरी भी आ गया है, तो तीन लोग जो हैगा पार्लियामेंट के, ओकर लगे देना के लगे ओएम यानी कि पीकी पठाई से ब्रीफी की बोली से तुलों बताओ कि इतीन अदमिया के तुलों तू स्टेमिंग हम लोग के देवे कि ऑन द सुक करी सकवा के ना। और इतीन अदमिया के भैया हुफद्रात है क्लीम और हुफद्रात एक मिनिस्टर फन बहुता के तेज पे तो अभी तक फरार है। रियाद नूर मोहम्मद ओवे के राफे या पे के तेज और बुरंतो सोमो हार्ज मिनिस्ट्री फन बहुता लांस साके के, तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भैले भैया दे नाम है। और घीचा तानी यही बल वही में और का बोले हैगा इंटरव्यू पे बताई सेगा, यानी कि अने गया दिन बोली से बोले एनडीपी ना मांगे सखवा अंदर सुख होवे, बोले उन ना मांगे कि ओपन बार में होवे एनडीपी, बोले चोरवन के बचावे है, बोले जैसे पहले बचाए रहा कि हुफद्रात हुफद्रात भग्य है, बोले उ सब चीजों ने करे है। मैं ऐन लग इफर खदरिंगवा इतना क्रासी गए ले भैया कि दे आना में गए है सब, और हम सब फॉलो कर ले भाई कि हुआ पे कैसे किस टाइम करीसेगा देना में कि इस फरफोलक कोई होई कि ना होईगा, एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंड ओकर रिजल्ट ई भइल भैया कि इस सप्त देना के नूर मोहम्मद हुफद्रात और सोमो हार्ज इंस्टाट फन बस्किल किंग होई गए है। अब ओएम के माख है इस सब के अंदर सुख करे के खरोत देश अदमीरों जो दिया नाम है उस सब स्टेम करी सेगा, स्टेम करी सेगा कि स्टार्ट बस्कुल लुकिंग में सोमो हार्जो और काबुल हुफद्रात और नूर मोहम्मद के स्टार्ट फन बस्कुल लुकिंग स्टेल कर सके ओएम के चाहे जाए के इस सब के अंदर सुख करी कैसे है, तो कौन ची चोरी कर ले कौन ची ना चोरी कर ले है। तो जो नेशनल असेंबली से नाम है दोंदर दाख के फोर्डरिंग फंड पी के बहांदल करी से ओम खवेसन पॉलिटिक अमतनार तीनों ने मुआ जोल ले दी है सबके यहीं जाए के। अब ओंडर सुख के एनडीपी वेर्डन फ्रागन खस्तेल ओवर द फॉलीड खेत फंड दोषे, एनडीपी बोले हम ना मांगेला एकर बारे में बतिया, बोले हम मांगेला फॉलीड दोषे हुए वार फंड गया दिन और अनमियन बोले तो के ना उफते सब बोले तू ओंडर सुख थोरो बाटे तू पी के ना बाटे, बोले पी के ये तो के कागज पठाइस के दमिया खमांगेला तोर आदमी देनान में ओंडर सुख करे ओंदा तू कुछ करी से, तो हमार कामना सबके फरोर दिल के हम लोग के काम है तू
toestemming dat we ke PG ke OM ke rechter ke kam hebben bepaald kreeg. De meerderheid uiteindelijk toch opgelucht mensen. Heel veel mensen zijn opgelucht. Kies gewoon onderzoek hoi. Niet een mooi iets is op deze loot loot chori karker. Of mouch kare he bhaiya. To VHP, NPS, BEP, ABOP en A20 benadrukten juist DNA ke. Ke rechtbank is niet. Bole ki geen rechtbank is. Bole DNA, bole rechtbank na he. DNA is geen rechtbank. En niet hoeft te oordelen over de schuld of onschuld. Volgens deze fractie moet de onvalke rechter uiteindelijk een ikerbare mee bole ke. O NDP choruwen ke khali bachawe bhaiya. Choruwen ke khali bachawe he toni. Ki ikke na karte, ikke na karte, ikke na kar. Aan chora log ke bachawad, bachawad. Hem log ke des barbaad hoeye. Abbe ohi platwa. इस सब ड्राई करे हैं तो फरप्लेख ना रहा कि सब कोई के चाहत रहा हाथ उठावे कि तेईका बाटे की ना जे ना मांगत रहा उ साल छोड़ के ओके चाहत रहा चल जाए कि ता फोर्सेतर अश्विन अधीन छोड़ के साल चल गए भैया बोले हम ना बैठे कुर्सी पे एगो फोर्स वार्डी में फोर्स बोले जा तू बोर देख कर बोले हैगा असेंबली के फर्दरिंग फॉर पीके टॉट इन स्टार्ट फ्रॉम बस्कुलकिंग स्टैंड फ्रॉम थ्री फॉर्मालिक पॉलिटिकल अमतनारन. Daarom is voldaan we wettelijke vereisen op grond van artikel 140 grondwet in staat van de beschuldigingsstelling van politieke ambtsdrager in de WIPA en kan de openbare minister strafrechtelijke onderzoek voorzetten. Dit is best een hele goede nieuws mensen. Die op Kabul hega OM vrijbaar. Ik er waren mee. Onderzoek kreeg ik waarom te PG John hey, hem ook in Suriname ke straflechtige onderzoeken kunnen verder naar de besluit van TNA. De ik er waren mee een PG hem ook hier apart betaald ze ki op usab ja sab ke onderzoek kreeg ingestemd met de vordering van de PG. Op betaald ge hij gaat oud-minister Klimmerhoofdraad openbare werken nationale Noor Mohammed ke. Of Noor Mohammed ke baat me bruntos om haar joke. Of yani ki sab ke de vordering van de PG werden op 9 maart 2026 bij DNA ingediend naar de behandeling van de verzoeken. Deze week stemde het parlement in met 3 vorderingen. Daarmee is volgens het OM voldaan van de vereisten van artikel 140 van de grondwet. Dus toe hem wil je aanplukken. Hem chota roep me bataai ki sakwa kaise hai hamare janta hamare pyare pyare janta. To ee joon malai hai varon to bhaiya bahut jor छटकट कूदत रहा तो अब एहू तरी रिस्टक हुई और बोले उल्टा पूजाने सब कोई मेर दर है तो के बस्कुल दख कर दी तो ही आपरे बोली से गा नीमा स्टार बोफन हेड फॉलक ओक ब्रुंतो नीत तो बोले है गा अब इसब अर्फकार ले के अपन साख लड़िए पेर असम्बली फोर्सेतर असम्बली ले और समोहार्जो पाउल समा ब्रुंतो समोहार्जो eist een eigen staat van beschuldiging instellen. Apreu op teken kan dus die mag hè, oké? Want u jane akel u thoro boliga ki hamme na mag tul ke onderzoek kare. Grote deel boliga ki sabke chahe onderzoek hove ke ta apro teken kar des ki ha chahe onderzoek hove ke to dosto Suriname ke duana bhaiya aap dekho tamasha kaun chakallas bhaila bhai kaun chakal ego aurat ke bhaiya ego aurat hai ga duana major worker bhaiya faraz bhaile vrouw keer terug van vakantie ego aurat vakantie se lautal bhaiya kahan gaila laut ke to bhaiya sundar hira aapko bhi hum bahut स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं हमारा हिंदुस्तानी के इमिग्रेशन के जो आज जो 5 यूनिट के होंद 3 एंड 5 तक यार भइल है तो आपको भी बधाई है जितने हमारा हिंदुस्तानी हैं रेडियो फाउन के माध्यम से आप सबको हम बधाई देते हैं तो यहां भैया दुआने भैया फरास हो गए के औरत गए ले फकांसी से और फकांसी से लौट के आए ले भैया ते का लाई से औरतिया सब कोई भाई हमनो सुरिनाम से आइला ते का बोले मछरी लाइला भाई मछरी लाइला कड़ाबू लाइला अब ई औरतिया गैला फकांसी से भैया एगो स्विट्जरलैंड दिस इज व्हाट अ फ्रॉ इन द स्विट्जरलैंड से प्लाट
Tajing deze week daar. Douane had er even druk mee. Ja, douane medewerkers. Jorha bij de grensovergang van Tajing. Boudoir ke ego bestel busje. Ujjar ail he. Ze wilden weten wat de chauffeur die terugkwam van de vakantie vervoerde. Bolle kontje laise. Bolle de vrouw in het busje gaf daar gehoor aan en begon haar bagage uit te pakken. Suru karise op een bagage uitpakken. Beswama ze bhaiya. 55 koffer leke ail he. Bhai vakantie chal hotel he. Ab bolie ka dharis bhaiya. Duane bolle ab kaun chakallasi bhail he. De een na de andere koffers kwamen uit de voertuig, maar liefst 55 koffers in totaal. De douanemedewerkers schenden ze allemaal en troffen niets geks aan. Ze bevatten diverse persoonlijke spullen, zegt een woordvoerder van de Zwitserse Federaal Bureau van de Douane. De douane in Zwitserland gebaat, is zijn naam gebaat, na Jeske Polke. Er was niks om bezwaar tegen te maken. Het is over het algemeen ook niet verboden, mensen. Toen jij ik had jaren leek een je koffer na zo'n 20 minuten was de situatie afgehandeld. Dit soort dingen horen van de dagse routine van de bakkie 55 koffer. Maar ja, hare da, kaise it hoi, of kaise it leegi hoi. Hamare bian janta, tari socho 55 koffer is niet hier, mensen. हम चलते हैं और आगे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा मीठा मीठा जनता। तो अब देखा जाए यहां बातचीत क्या हो रहा है। बातचीत क्या हो रहा है ओएम के बारे में तो हम आप लोग को बता चुका है, लेकिन और बात आप लोग को हम यहां बताई भैया। एगो देर तक यार के आदमी गैल है बौश बरख पे। हाँ, बौश बरख तो लोग जानो भैया, ओकर नाम हम दल्ली बाटी सेल्फ मोर्त बरख। हाँ, सेल्फ मोर्त बरेको का नाम चाहिए। ये ही देखो भैया, जैसे स्वयं बात में झड़ांग लगावे भैया, इरा जा टप से कुछ जाए कभी ना निकल के आवे बहरे। तो ऐसे को देर तक यार के आदमी गैल है भैया बौश ब्रेक पे। तो हुआ से टेलीफोन करे और कैसे कैमरा से टेलीफोन करे है न बौश ब्रेक में से कि अब हम जाएला कूदे, हम जाएला कूदे भैया अपन फैमिली लिट से। है नेट फॉर नेम दैट फैमिली रिसीव नाम से पॉलिसी ओवर फोर फॉल हीफ के इंफॉर्मेट। और बताई गई है का रात के बातचीत है वेर का बेल्फियन वीडियो कस्प्रेक तेजिस का कस्प्रेक। ये भैया बतावे है का हम बहुत शुभ्रिक पसे बोले हम जाएला कूदे। बोले देखियो तो लोग कैसे हम कूदी ला तो टिकटॉक बनावत रहा भैया लाइव यात्रा कूदे। Kort na deze melding werd de verbinding verbroken. Bole verbinding wat broeke. Oeiro se Jeremia na bhetane bhaiya koi ke na milal he. Sindsdien is er geen contact meer geweest met de BM. To vermoedelijk is deze man natuurlijk in het water gesprongen mensen. Hem jai tari van het hoge huisstraat ke baare me bahoud bhaiya aaphad ma chale. Sanna me jonen mi sanna me gaadi chala. आपके तो पता रास्ता में भैया हम का बोली जैसे काउ फूतू होइगे आसफाल में काउ फूतू जैसे होइगे भैया। मां काउ फूतू में तो अब तो गोड़ घुसी निकल जाई इतना भारी भारी गढ़ा और बुड़ल है भाई। स्लांगन हाउस स्ट्रांड के बीच में फनो हुख है स्ट्रांड कि आदमी बड़का बड़का ओतो लेके गढ़ा में घुस जाए। जो समय पे फिर यहां पे रहा भी ई प्रॉब्लम हुआ रहा तो ई रखे रिंग हुआ लोन क्लाक करत रहा भैया। अब ओ ही के रखे रिंग में इतना बड़का चकल्लस हुए हैं। अब जनता उल्टे गरियावे हैं एनडीपी के रखे रिंग के तुतुलों कौन ची करे है। तो यहां बताई गई इतना भारी भारी घटता खदेट लग ऑन कपे 150 मीटर। अब बोलेगा स्लेक्ट टू स्कान फन वेग द अफलोपन पीरियड अब इसे मांगे हैगा फन ढोकर बहुत तो दृष्ट बरीदन वीकन उतरा ओतो हुआ चले फन रोका स्ट्रैट में।
आउस मांगे चार तारीख यूनी के चार बजे वो छ बजे लेक मांगे बंद करे टुक्का और एक टुक्का मांगे समान असफाल तेर करे भैया वही बात है वेर बुरुकू और पूर बुरुकू हम लोग निगरे में बोली ना वेर बुरुकू चपटावे भैया सुंदर भाई जैसे कि कोई जब ढोल बजावे और उंगली कट जा है तो ऊपर प्लेस्टर लगा देवे है ढोलिया दोरो बजाए कमुआ बन जा है तो घरवा जाए तो तेल लगाए के हथुआ अच्छा करे है ना और जो ननमी नाचे भैया जूता कभी फट गए तो गोड़ में झलका पड़ जा है तो उस समय पे मोटा सौकों को पहर के अच्छा करे ऐसे भाड़ी भाड़ी गढ़ा है तो सबन चटावे भैया जैसे चिड़ई हगे है चारों बगल वैसे सबन असफाल चटाई के और आदमी के आंखी में धूल डाल दे देख हम बना देली बाटी तो ई सब बात बाकी कोई ना है कि चिजुआ खूब जोर तोड़ से फॉर ऑल टाइट ओके परमानेंट ही लमा असफल तेर करके और हमारा ऐसा नाम के फनहू को है स्त्रात बना देवे है तो सैफ बी से चित्रा अवतार भी आएंगे हैं तो वहां पर सैफ बी की फिल्म हमने देखा है पानी भैया डैम से ई पार से ऊ पार जा है और आदमी लोग के घर में पानी कंडाल में भी चल गए है आदमी लोग के वनिका से बुड़ल है आज की हालत कैसे है ये हमें मालूम ना है लेकिन काल के हाल कल के हाल तो यही था जो हमने देखा है तो भैया एक आदमी है सीफरन ट्विन तक या रखे एक आदमी भैया हाँ यहाँ बताई गई है बुधवार के ई गैले गो रस्ता का नाम बा पीका दोस्त्रात और अनामुस्त्रात में वहाँ गैल है भैया जब हुआ गए ले पिकादू स्त्रांत में तो बताए गए हैं वहां पे एगो त्योता फित स्त्रां भाए और बोले वहां पे दकते गए है वैसाख है दाद फर मुडलकस के तो सामन में अंदर खराई से तो फत्रो के अंदर एक तेम तुरतो नाला दग उल भैया भैया एगो बार में तो मैं ही कहिला बार और हम तो न जाए इस नाम में स्कोतन खलोस बे बार हिल्स को फोन ऊपर पार्कियर टेरेन तो सुरिनाम इज ऑन फेलक मेंस बार और में ना जाइयो हम में भी एक मन ये ठंडा बीर ना तो अपन घर ये मंगाइयो भैया ठंडा ठंडा पार वो बीर और ओके खूब नच से घरे पियो बाका करियो बाका करियो वेत वेती मछरी बाका करियो और करोड़ करोड़ ही मरियो ठंडा ठंडा बीर धरियो और धरियो भैया धरियो बैठक गाना पाचे में और झकझक झकझक बजे है दन हैप्पी हिल मालखिन प्रॉब्लम बाकी अपन लोहवन ताला कर दी हो भाई वन असाय तो चोरवन भैया घरवे माई के लूटले है परस ये माई के लूटले वे है दिस ओहू चीजवा बचाई के रही है श्री नाम के हम नासिला वार है बताइला अब देखो भैया मिनिस्टर फान मिनिस्टर के हम बोली ला मिनिस्टर के बोले ला मिसी काबा फॉलोस कोसों थई के अभी का बोले भैया सुरिनाम में सिस्टर एस्टर भैया ना है सब खोजे फॉर प्लीक के दख के त मिसी काबा का बोले फॉलोस कोसों थई के कि अब उ का करीगा हुए के आदमी लोग के अपन कोस्त पे मतलब लांटी के कोस्त पे अपलाइडिंग देगा बोले ढेर बोले दुनिया भर पे खफराख फॉर प्लीक के दख त बोले जेके हम लोग लेस देबे तो के फॉर प्लीक पांच छह बरिस फर प्लेख ऐसा नाम में काम कर ओकर बाद में मंगी बैतलान तपन जाए के काम कर सके है अंदरी मिसी काबा के प्लान है भैया इसे देश चली ना कि अपन सिस्टर के उस सबके मुँह से पकड़ ले मांगे उस सबके अपलाई देंगे वह भर देवे पांच बरिस फर प्लेख कर एक देसो हम का ओकर बाद में तू फ्राई बाटे जाओ बैतलान में काम करो हेड फेथ दैट इज सोन ग्रोत फ्राक इन बैतलेस ना श्री नाम फर प्लेख कंद के बात है भैया नीदरलैंड्स में ढेर निकले लेकिन आपको हम हिंदू स्थानी में फोड़ के तरीज बताई रही है कि एक प्लानिंग का है बोलेगा फन वीक है फेई दस है देर तक दैसन ऐसे दी नीट के बता लें उसे उतरा है अपलाइडिंग तो बोले हम लोग भरब है तेज विन विस्तरा तीखी ओम दत वे नीट मेर के उन्हें हेवन दत वे मेंशन अपलाइडिंग फॉर हर बैतलान द दाग वार ऑफ मेंशन हिंदी डिप्लोमा करेगा कि उन्हें से एंकलक आल इन फ्लिक्ट टेक्स्ट अपन एंड वे खान
तो ये बात है हमारी जनता, मिसी काबा के प्लान है भैया, मिसी काबा का प्लान है, ना कि अपन फरप्लीक कुंड के मुई से पैसा भर और सुरगु कर कि हमारा देश में अच्छा अच्छा दतरा हुए। अब देखो भैया तो लोग जानो सुरीनाम में दुकान में के आगे वॉट्स बड़ा गरम गरम बिका है, तो हाँ गरम गरम वॉट्स हुआ बिका भैया, तो गरम गरम वॉट्स तो हम भी कीन के खाएल भैया मुर्गी के। तो यहाँ बतावे है कि असा जो आदमी वॉट्सोन बेचे है ओहू के छुट्टी ना भैया, का बोले है रोफ ओफ के बारे में तेगो वॉट्स पर कूपरा भैया पंडित पलतन तिवारी वे और चोना कीट के हुकू पे भैया सबन वॉट्सवा का नमिया दागी समझाई नहीं वॉट्स मांगत रहा कौची मांगत रहा फॉर द उमर वॉर द नमान सेल फॉर यार द सामन मेट एंकल फ्रिंदर फोर अन बार फिर द तुन तुई क्रिमी op een bronfiets ter plaatse verschenen. En toen uiteraard hebben we de bekendstraat dat bekend staat als Pillu. Kono Pillu, bhaiya bekend hai Pillu ke naam se. Aur kono ke Pillu naam hai. For volka saal de plosseling o pistol. Aur dagi se bhaiya isab ke faryari dukaan ke aage manawat raha. Sona ke keti ghinch ke li ke chal ge hai. The word for Cooper for set a se khifa. Warna ego word stiling bhail hai. Deze confrontatie vuurde de rovers gericht op hem. Na het schot rende de verdachte terug naar de bronfiets. En ik er ketie leek en bhagge. Bole, ab jao, pino wars to becho, bhaiya. Wars, wars, karie. En bole, de gewonde wars verkopen kreeg direct. Sipahi ail he.

0: भैया हीरा ना ना ना ना ना ना ले जाओ खेती हम मरे ना जा भैया जिंदगानी रही तो फिन खेती की ना जाई माँ हम ना जा भी छुड़ी भोकौल के तो रांच राम लगन भी आ गया है। तो भैया रांच आपको भी हम अपने प्रोग्राम में स्वागत स्वागत करते हैं। तो हमारी जनता और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर हम और चलते हैं सुनाते हैं। आप लोग जानो है हुफ दरात कितना दिन से फरार है भैया फरार है कब से वो भगल है भैया कई वर्षों के कोई ना पा बको को सखवा चले है। और यहाँ अब जोगी का पूछेगा हम लोग के देना फोर्स सेक्टर अधीन से अरे कैसे तू हूफ दरात के बराई कर ले बाटे अभी बतिया पूछे है दौंदर दाख मेदाख के ओम पंबारे मिनिस्टर तो हेत के स्टार बस्कुल लखिंग फन फरमालक मिनिस्टर हूफ दात रियाद बरुंतो के तेज फरखाद रे रिक्त फे यहाँ पे पार्लियामेंटरी महेंद्र जोगी दी ओक दिल एट मार्ग दर फन कमिशी देर फरसुक हिफ ऑनर सॉक अन फ्राक अन दे एन फोर सेटर अश्विन अश्विन से पूछी से जोगी पूछे है जोगी पूछे है जोगी वेल द वेटर ऑफ वेलकम वेसेड फरमालक मिनिस्टर क्लीमर हूफ दरात ऑफ द होक्ता वास्क स्टेल फन इन getiende vordering. Ik wil aan u oriënterende vraag stellen. Ik neem aan dat ik die vraag mag stellen. U deelde mee dat u gewezen politieke ambtenaarsdrager op de hoogte heeft gesteld dat de vordering zijn binnengekomen. Mijn vraag aan u voorzitter. Hoe heeft u de heer Hoef dat bereikt? Dat jogito poetje wolle toekijse bereikele baarte adhinoa. Voorzitter baarte wat hem je verhaar he. Wolle toe wolle sub adamien kent op de hoogste sel ab adhin bata. Adhien reageerde en met een glimlach. U weet dat er zijn raadsmannen antwoordde. De parlementvoorzitter. Aur bhaiya Mahabharat. Nauro padhal hai. Gita kaise dhyan dewe hai. Ehi adhien. Aur yahan pe jhoot bole bhaiya. Bole hai ga tu jane. Raadsman advocate use. Uka bole contact kari se hans ke bole hai. NDB fractie leader Ibu Jones. Concentreerde en vroeg een punt van orde. Volgens hem was het ongebruikelijk en procedureel onjuist dat de parlementaire je voorzitter onderdeel van de discussie wilde maken. Ik vraag uw spreker te verbieden om conform het reglement van orde van DNA vragen te stellen aan de voorzitter. Dit is procedureel niet correct. Stel Joost dat Jones tot de goed tere bij ja, kan ook er. Voordeel mee rehet en mera kehna hai bhaiya ki iedereen mag iedereen vragen stellen sabke mag je vraag stel kareke dat is het gewoon mensen of je adhien bent of je president bent maar iedereen heeft recht namelijk iemand anders vragen te stellen to Tony aapko bhi hum yani ki hindustan se इमिग्रेशन के बहुत बद बहुत बधाई देते हैं। तो हम सोचिला जितने लोग हमारा फेसबुक पे है सुंदर हीरा रांच लगन और चित्रा और यानी कि इसरी टोनी राजा जोधिया आप सबके लिए एक गीत हम चलाते हैं और मिलके इसको सुना जाए ये है हमारे परवसी के कहानी।
1: 140 बरिस हो गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए सुरीनाम देश सपना देख के

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखी में

राम ने बोलल गए, चल श्री राम देश, उधर सब कुछ मिले, कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू हुई।

श्री राम देश चले। वहां पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खातिन खेती बारी करती, तब ढेर पैसा मिलत। और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिला। अरे खेतवा तो मिलल, बाकी बहुत

पीछे छोड़े के परल आपन देश, बाकी अब सरनाम आपन देश हुई गए। सरनाम अभी यहाँ आए के अभी धरिए रहबे, जिंदगी अभी यहाँ गुजरी।

0: तो दोस्तों ये हमारे उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शरीफ इसहाक थे, जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन अपना आवाज़ हम सबको दे कर गया है। बहुत महान थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो जितने लोग हैं यानी कि 100 DFF तैयार हुआ है हमारा इमिग्रेसी के, आप सबको हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, रेडियो फाउन के तमाम कोलीखा डायरेक्सी लेडी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई है। प्रताप अवतार भी आ गया है, लेडिंग शीफ आसिफ भैया बेटा सनही भी आ गया है। आपको तहे दिल से प्यार देते हैं और आपको हम स्वागत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे को चलते हैं हमारी जनता। तो बातचीत ये है हो रहा है सुरीनाम में, आप लोग को भी बताए थे कि क्वेक जो क्वेक है सुरीनाम में, क्वेक के बात हम करते हैं। सुरीनाम में क्वेक जो है चोरी भय ला भैया अब एक बारे में आप लोग को तो हम और ठीक से बताएंगे। तो जो कॉर्प शेफ मेल्फिन पीना से जोगी जोगी महेंद्र जोगी यानी कि दयाना मेकर बारे में जो मिनिस्टर फॉर यूजिशियन पॉलिसी के हनीश मनोरस से सवाल करी से कि कैसे इतना ढेर क्वेक चोरी हो सके है एगो कंटेनर में जो पॉलिसी ब्यूरो के परासी में धरल है, कैसे चोरी हो सके तेकर बारे में ए बे जोंस अब ओम चटकल के कहे फरकवा तो स्टेल। अरे भैया तू बाटे देना में एगो लड़का भी फ्रॉक स्टेल कर सके है कि कैसे चीज हुआ चोरी हो सके तब एक बारे में कॉर्पशेफ मेल्फिन पिनास जो है वुर्स दाख द्री यूनियन के गैल है परसोलक ऑन द सुख करे बसुख खबरा अन पॉलिसी खैर फ्लाइट में वार्तवेई कफूल के साथ कर सेंट्रल स्टोंडन ऑन फ्रेमिंग फन क्विक आउट एंड कंटेनर फन अफदेनिंग फ्राउड एंड ऑन ट्रेमिंग सेंट फन डेनी फिला पार्क। तो लोग जानो डेनी फिला पार्क में वहाँ पे एगो पार्क है भैया और जाए के पोकलेन मुंगरा पार्क और फिला पार्क में एगो मशीन है ले के हुआ आदमी लोग के घर के तरह तुरान है भैया और जो पोकलेनों गए लोग के संगे बड़का बड़का बफेले हैं आदमी जड़ जबड़ आका कानी शरीफ ने फिर तक बोले कौन जी भैया जबड़ जबड़ बंदूक लेके गए हैं कि वो सबके कोई कुछ ना करे और घर में अब सब इनबूदल है, सब इनबूदल है भैया तोड़ तार के घर प्लाटा कर दी। इसे जनता चिल्ला है उकर घर जहां पूछे 20-25 बरिस रहे और गैल है सब घर तुराई गए हैं। तो एकर बारे में बहुत हिंचा तानी भय लेकर बारे में देसी गैल है और यानी कि पॉलिटिक भी ओमा बमुई कई सची युवा बंद कर दी से स्टॉप करी से और अब सब पूछे है हनीश मोरर के जोन हुआ पोता जबर जबर अनमियन गला बड़का बड़का बंदूकिये लेकिन उसे के रहा उसब कह रहा कि इसको सुरीनाम के ना अंत पक्रिज में सो वापन ले के हुआ गई लेगा और उतरा घर तुराने ब्लैक भैल है कि जगहियन जितना हैगा तुई केर बिचाने भैया दुई डाई बिकान है जो नरमियन उना पैसा लांटी जगहियन नरमियन पैसा भर भर एरो भर भर जगहियन कीने रहा अपन कफलवा फीला पार्क के और मुंगरा के मुंगरा कॉम्प्लेक्स के तब वो सबके घर तुराई गए। एक बारे में अब बहुत घींचा तानी है तो अब यही स्कूतुआ मेल्फिन पीना स्कॉरप शेफ दुई चीज गए खैर फ्लाइट में पूछे कि ये चीज कैसे हो सके है ऑनर सुख गए करे क्विकवा कैसे चोरी भैल है तो बोले हैगा इन्फॉर्मेर बेर फ्रॉड ऑफर फॉर द्वेनिंग फन हु फील है क्विक कॉरप शेफ नेम द साक hook up and hit direct unfilling the veiligheid regeling laten treffen haar aur jitra chi jab container mein raha sab hua se froisi karwa de ise ab froisi to bhai le bhaiya ab kyu kahan gaye le froisi ke sir naam kisi bhai vishwas na hai bhaiya pratap avtar vishwas na bhaiya bole hain je ke moos ke dhariyo aur kaise bole bilar ke dhariyo na bhaiya hira doot rakhave to ka hoga to hamara fatingan ramraj bhi aa gaya hai aapko bahut pyar se swagat karte hai bhaiya fatingan तब धरियो बिलार के दूत रखावे के तो कैसे रख के कैसे वो रखाएगा तो कॉर्प शेफ अब गए ऑन द सुख करे कि चीजवा कैसे है और इंस्पेक्टर बेन ऑफ द इन फ्रॉड किंग पिनास ओक ना आनखिफ्त दिन्स और बोले है मुंगरा प्रोजेक्ट के बारे में भी गल अंडरस्टूड करे डेनिस विला पार्क सॉर्ट फॉर फील फ्रागन ऑन द मेयर ओवर द रोल ऑफ द पुलिसी टेडस द ऑन्ट्रेमिंग नार द आनलाइडिंग daarvan इज मिडल ऑन अंडरस्टूड gestart door een gespecialiseerde eenheid van de bestrijding van zware criminaliteiten के बारे में तो फील पार्क मुंगरा तो लोग कितना कितना घर आदमी लोग के इन बुदल भैया जेमा इरको लगल ऐश काशी है घर में अब सब इन बुदल है कितना आदमी हैगा जोन के हुआ फकांसी है बनाए रहा अपन घर बनाए हुए रहा और ग्वाइटलैंड में काम करत रहा जाए जाए धीरे धीरे अपन घर बनावत रहा कितना आदमी जो रहत रहा भैया सबके घर टूट गए है तो बहुत दुख के बात हैगा सूरीनाम देश के बातचीत हमारे जनता। अब देखो यहाँ पे हम बोली तरी जाए तो NDP का बोले है बोले फिना शेल मोदर पुल फन थिंग यार लॉस्ट ये नीड इन फेफ यार ऑफ और बोले मोदर पुल के बोले चहटान जो ची है बोले जो धसान चहटान है बोले है 10 बरिस के बोले 5 बरिस में थोरो बोले ओके अपलॉस कर पावे जब से देखो तो चहटियान है भैया फतिंगन कैया सफा भइल है कैया सफा भइल है NDP कमोवेन के कोऑर्डिनेटर शांतल सामुएल तरह दत्तल मुदर पोल नीत इन ए स्टाप कर फरांदर इन द ड्रिंक वाटर दिर वर्कलेकिंग एक्टर ओक फॉर टूपासिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन रखेरिंग सन टोकिन 2020 आंत्रो ऑफ फाइनेंशियल मुदर पोल दी टिल्ट gedurende 10 jaar is ontstaan los je niet binnen in 5 jaar bovendien werden de eerste 2 regeringsjaren overschaduwd door de wettelijke COVID-19-pandemie, de economie en overal terwijl het zwaar trof. De दस बरिस या के चाटा में लौटत रहा भैया तो अपन चाटा जोन में तू लौटत है अब जाओ अपरे एक गिलास में धोइयो या परमानेंट में नहाइए सफा तो ना हुई भैया आधा सफा जो होवे है ना अरे तो फिर से वही में लबड़ा जाए कौन आवे है जो समय पे फरकी सिंह तय चेगा तो चाटवा लभेड़ल करी कि सबके हम का बोले खूब खवाई पियाई कि आओ हम में तू लो ने करके फिन बैठाओ और वही में काम दी है दुनिया भर के आदमी लोग के और देशवा तब चाहटा में हुए तो जो अदमिया ले देशवा तब बोली हैगा देखो कितना हानि करके देश हम कैसे देशवा संहारी देते यार इन यार इन यार ऐथ है युवा भैया सन्नाम के रवाज है युवा तो कैसे भला देशवा हमार हमारे देशवा कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरीगा सुधरे वाला ना है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों जॉनी के कहना सफा बात है अच्छा लगी तो ले लियो खराब लगी तो हमारे। अब देखो मिनिस्टर भैया एल्फे के नूर सालीम के बारे में यो ही नूर सालीम है भैया फतिंगन जोन समय पे NDP के समय पे ई परामारी बहु के देश ही रहा भैया और आप लोग जानो हैगा एक रात में जो तेकन निकल ले रहा कगचुआ तुम लोग जानो ना किल के वहां पे जगहियन बटाई गया रहा रात भर में वही नूर सालीम है भैया वही नूर सालीम है। अब NDP जीतल है तो एक सबन मिनिस्टर बनाई से एल्फी के मिनिस्टर बनाई से भैया अभी एल्फी के मिनिस्टर तो बन गए हैं मैं एल्फी के मिनिस्टर तो बन गए हैं एक कर बेटवा कौन चक्कर लस करी से। अब देखो ओकर बात हम आपको बताई है ओके नूर सालीम माइक नूर सालीम हैगा मिनिस्टर फॉर लैंड बाउ फीतिल एंड फिशरी एलफीफी के एकर 20 बरिस के बेटवा का करी से मुन्नारायण भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। तो ये 20 बरिस के लौंडा का करी से भैया और एक के ये अपन बाप के मतलब लांटी के ओतो चलावत रहा भाई हाँ और ये लांटी के ओतो चलावत रहा बोले है तेबे द्वे मानद वर्दन और बोले है कि 15 यार के बरो में को लंडा 15 बरिस के ओके समान रूफ करी नूर सालीम हुआ के बेटा हुआ 20 बरिस युवा वाला रूफ करी से भाई यहाँ बताए गए रूफ करी से बपुआ के कौन ची के कमती है के बेटवा जा है 15 बरिस के लंडा के रूफ करे बाप है मिनिस्टर, और लड़का ने देखो क्या करे भैया, बाप चाहे अच्छा है चाहे खराब है, मन लड़कन बाप माई के नाम गिराई दे है। आप लोग देखो जानो संतोखी के बेटुआ भी अपन बाप के कितना बड़का बड़का बात बोली से। उधर बहुता के बेटुआ बोरंतो आज तक बन है, और वो बेटुआ और करेगा और है, वो बन रहा भैया वो निकल है। तो लड़कन अब उधर एगो और भैया गाय चोरा रख के गया एथनल के बेटुआ, तो बड़ा बड़ा पोसीसी वाला आदमी लोग के लड़कन का नाम गिराई देवे। ऐसे यहाँ पे नूर सलीम के बेटुआ एगो 15 बरिस के लौंडा के रूफ करी से बरूफ करी से एक बारे में अनखिफ्त भैले भैया। पुलिस मांगते इधर बकेंदर बेहद फरदख्त न ऊफल सिद्ध बेहद ओएम द साक वेर फॉर फोर्कन फोर खलेक ऐसी लगे। और बताई गई है यहाँ पर बताई गई है कि ये सब लंडन जो नहीं दिन स्फूर्त से ऊपर से भैया एयर पुलिस अनुसूक ब्लैक दर फरदाख्त से इन दिन स्फूर्त फॉर मिनिस्टर फॉर एल फी फी फॉर प्लाट्सन तू से ने मिंदर यार का ब्रॉम फिर से तीखन को आमन फोर्कस द आनखिफ्त सो द स्लाख्टोफर फॉर फोर्कस तीखन सेन विल सेन मी खनूमन एस ऊपर से के मैं सांदल भी करी से भैया। तो लांटी ओ तो देवे है गा मिनिस्टर लुक के कि ओकर बेटवा जाओ चलाओ और डाम पे पियो कोई के रूफ कर लियो। ई हमारा देश है भाई, ई हमारा देश है। जनता हुआ ब्लास्टिंग भरे हैं ओ तो हुआ के जनता के ब्लास्टिंग से तो हुआ कि ना है, और मिनिस्टर अपन बेटवा के देवे बोले जाओ रूफ करो। ई भैया कैसे देशवा चली, और हमारा मीडिया जो सूरीनाम के है इसा फराख ना जाने स्टेल करे ओम दान द मिस्ट मीडिया हीफ नामलक दान पॉलिटिक फोर देल। तो उना जाएगा पूछे भैया कि और एक बेन ही एक अपील माल खिन फोर देल में निमान तो सच्चाई अन मीडिया मुत आल्टेड फ्रेई कुन प्रात फ्रेई कुन प्रात जैसे है ये मुत निमान फोर ट्रैक। जब नूर मोहम्मद के में इंटरव्यू करे जो बदमाशी करी से चोरी करी से तो ओके चाही जहल में जाए के सो इज्जत ओको फर्जी रखें ना चाही करे के। जब हुफदरात लूट के गईल है तो ओके चाहे जहल में जाए के ना ओकर ऊपर तलो हाथ दर के ओमदा तू एन दे पेयर है तो ओके ना माखे फॉर द रेक्टर जाए के। सो खान अल्लाह ने दौर खान अब एगो छोटा आदमी घरे चियो पर दे द खोई सके धोई सके आसान भले के बड़का बड़का आदमी लोन बचावे है। इंग्रिद बहुतस बोले हुफदरार के ना चाहे फॉर देल करेंगे, एगो मलाइनी बोले है अधीन जोन फोर्स से तरह असेंबली ये छोड़ के चल गए हैगा। हम लोग के रेक्सटाट कहां है सूरीनाम में दोस्तों, अतिस बलखलक फॉर ओन्स लैंड सूरीनाम दखात तुम एंड दैट इज कौन द वार है हम किसी को फोर ट्रैक न करेला। तो जनता हम जाई भैया अब जइयो सूरीनाम देश में तो हुआ पे भैया हॉलैंड के कुत्ता पियो हां तो कुतवा जोन है भैया बारा जबर नकुना है ओके ओकर नकुना किलोमीटर से सूहे है झुर मछली ना सूहे कड़ाबू आबू ना सूहे खाली कोका सूहे खाली कोका सूने भैया। और कोका जो सूही तो वहां टप्प से बढ़ जाई टप्प से बढ़ जाई कुत्ता ना काटी कुछ ना। और ओकर जोन का बोले है बखले इधर है बास से ऊपर से जान जाए बोली कम में कॉफर खोल के और कोकाई ने तोर पाई जाए। तो नीदरलैंड के अम्बासाद जोन बा सूरीनाम में कुतवा के दी से ऑफिशियल दृक्ष पीसो तो जितना आदमी दृक्ष फुरिक्स लेके आवे भैया पहले तोर स्वागत करी हॉलैंड के कुत्ता तो ओकर बारे में कॉल ले के मारा शीशे ही लगे जइयो ऐसे बतिया है एट मिस ऑफ फन एंड फन प्रोजेक्ट इज दैट ही मी द बास्ट basis wordt opgelegd voor de nieuwe Hondenbrigade. Kebare me dosto, Suriname des ke bhaiya char mila pakrane yes ke phol pe paisa vet was kartra bhaiya ha. Aur namua ham sulli bati. कौन कौन है ओ माँ बकी जब लेग मीडिया पे ना ही हम नमुआ ना बताबे ना अति स्त्रीखहिमेंस अति स्खहिम जे तो के पकड़ी से वेतवा सके चीज और वो बतावे है कि इतना सन्ना उच्चार दुगो और दुगो मरत हैगा सूरीनाम के यहाँ के पॉल पे उकले के बहुत ढेर पैसा पाए सो के दुबई में मिलियनन के घर रहा मिलियनन के साकर बोले अंदर नीमर है सूरीनाम के और वो के पकड़ के सिपाही यहाँ बंद करी से का फोन वेतवा से पैसा के बारे में लेकिन नाम ना लिखल तो हम ना बतावे उन दांग हम नमून सुन चुकली के है मदखा एक नीचे ओमदा तो नीन बकेंट इज एक वेल सेल्फ नीट इन द प्रॉब्लम एंड को मोमेंट्स तो ऐसे बात है और जो क्विकवारा भैया फेफ ऑन द सीफन 30 किलो क्विकवा चोरी भैले कंटेनर में से भैया कंटेनर में से चोरी भैले अरे भैया तू एन तक तक किलो हां तू एन तक तक किलो ओ जारे का मिलले सी तागोरी चरण गजरी हां आपको स्वागत करते हैं तो तू एन तक तक किलो भैया सीफन तक ब्लॉक सेफन तक ब्लॉक में पैर्स कर भैया तरीकी कर भैया दबाए धरे रहा कोका इन 80 किलो भाई दो पिस्तौल मिलल है सूरीनाम में बिलल है जहां पे सिपाही अंडर सुक करता होम पर स्ट्रात में बेड अंडर सुक इन दैट फुरते एक वर्दन मिर्दन ब्लॉक में कोकाइन और दो वापन मिलल हैगा ड्रग्स फंग इन बेड फुरते uiteindelijk uitkomt op meer dan 80 kilo. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs. De wapens en wat apps. Maar ja, ik heb ja. Kweek, tjuri hoi ge. Ik ook een waka hoi. हम कोई के बस क्यों लख न करी लामा दैट इज हाउ द वार हेट मेन से द फॉरट्राउट है द ऑफ द पॉलिसी फॉर सूरीनाम सूरीनाम दी राख टेलकस वेग भैया दी राख टेलकस वेग ik ga proberen een keertje toch meneer Hanis Manoret aan te bellen zodat hij namelijk beter kan uitleggen wat gebeurt het ohi jab aila bhaiya net baithal ha to ohi Hanis Manoret bole raha bole hai ga mo rek kon te kyu bole hum rek karke to ke pakda bhai और बोले नो तेस में तो जोगी बोले नो तेस में बोले स्कूटून तो के तेस करे पुलिसी ब्रू में से क्लोइस में से पैसा चल जाए ई चल जाए यू चल जाए 300 किलो क्विक चल 537 किलो क्विक चल गए है तो बोले कैसे एकर बारे में है तो ये बात त्वेयन तक तक किलो कोकेन भैया पकड़ान है हमारे जनता ऐसे बतिया है तो और आगे हम आपको सुनाई है बे बोले री सिपाही भी मांगे अपन नाखदीन के पैसा और सिपाही मांगे नाखदीन के पैसा ओहू सब मांगे हैगा ऑफ हेल्डरिंग एकर बारे में हमारे जनता हमारे दोस्तों तो आप लोग को हम बोली एगो गीतवा सुनाई दे तो शारदा जवाहिर आ गया है हमारा प्रोग्राम में आपको हम स्वागत करते हैं
1: जब श्री राम देश आ

दोस्तों एक घंटा हो चुका है, मुझे प्रोग्राम तो रुकना पड़ेगा ना। और अपना देश को हम बहुत याद करते हैं, हमारा मातृभूमि श्री नाम है। और अगर जब किसी ने उस पर उंगली दिखाएगा तो दिल में तो चोट लगेगा ना, चाहे वहाँ के लोग चाहे यहाँ के लोग। अपना मातृभूमि तो अपने ही मातृभूमि है हमारे दोस्तों, और जब अपने ही लोग उसको जो लूटेगा तो बताना तो पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा ना।

हम बधाई देते हैं हमारा इमिग्रेशन के 5 यूनी का जो हुआ है और सीता गौरी चरण है, शारदा है, चित्रा है, मुन नारायण है, राज राम लगन है, टोनी इसरी है, सुंदर हीरा है, चित्रा अवतार है, धर्मेंद्र इसरी है, प्रताप है, राजा अयोध्या है। आप सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम राम, नमस्कार और प्यार भरी राम तो फॉल खंडे केयर। आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे। तू मेरे आंस

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: से चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती। और राधा और कृष्ण का जोड़ी आज तक दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल पुरे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत नहीं खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो।

0: या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं

और तेरा नाम में बसी है खुदा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में, लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्राण में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

Ordos तो ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देन हाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों कुछ लोग कलसों आप लोग को मार सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोंग हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोंग है।

और तेरे दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरी सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुखान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुखान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

हेना एकदम इस गीत में ये सुंदर सा गणेश गीत आपके लिए प्रस्तुत किया गया है मेरे दोस्तों। और यहाँ से एक ये भी है,

कोलकाता से ये म्यूजिक फ्यूजन म्यूजिक यहाँ से हमने सुने इंस्ट्रूमेंटल दुर्गा माँ के ऊपर लिए। गणपति बप्पा यू।

अमित कुमार जी के आवाज़ में, अमित कुमार यानी कि कुमार किशोर कुमार जी के सुपुत्र अमित कुमार जी के आवाज़ में ये जमी गा रहा है फिल्म का नाम तेरी कसम।

0: टू एंजॉय
1: हेमलता जी की आवाज में श्रवण की है। आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम। प्यारी प्यारी पल, प्यारी प्यारी पल, खुशहालता के कामनाओं के साथ आपको एक शुभ समय, एक शुभ समय आपको जरूर से मिले। आपके लिए हमने सुने हेमलता जी की आवाज में, तो इस तरह इस बार हम सुनेंगे मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

फिल्म का नाम तेरी कसम। फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे, हाँ कोरेक्सी आप तो ऐसे ना थे। फिल्म का नाम रफ़ी जी की आवाज़ में, इससे पहले हम हेमलता जी की आवाज़ में सुने थे यही सेम गीत। और यहाँ से पेश किया गया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में और किशोर दा जी भी ये गीत गाया है। मौका मिलेगा तो हम जरूर से उनका गाया हुआ गीत आपके लिए चला देंगे। कहते हैं यू हैव नॉट ऑलवेज लक गफोंडन द वर्डन, यू हैव नॉट ऑलवेज लक गफोंडन द वर्डन, द जस्ट मेंशन होल्डन फॉर यू, द जस्ट मेंशन होल्डन फॉर यू, ऑन वी यू एक्ट बेन नीट ऑन वी यू प्रोबेयर टू सेन। Gewoon jezelf blijven, mensen, lieve mensen. Gewoon jezelf blijven.

0: बच्चों की आवाज में ये गणेश जी की सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। मेरे दोस्तों, आपसे ये बताना चाहती हूँ कि फोरुइट यानी कि आगे की तरफ, फोरुइट इज नीट आल्टाइड रेखडोर। आप इसे समझे कि फोरुइट इज नीट आल्टाइड रेखडोर,
1: या पुरुष या फिर वो दोनों है, क्योंकि शिव सिर्फ पुरुष नहीं, वो अर्ध नारेश्वर है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाही तो शक्ति की आवश्यकता पड़ी। शिव ने अपनी आधी चेतना से शक्ति को प्रकट किया और फिर जन्म हुआ अर्ध नारेश्वर का।

0: साकार रूप लेकिन परम सत्य का प्रतीक अर्धनारीश्वर का अर्थ भी शिव है। क्या ईश्वर स्त्री है या पुरुष या फिर वो दोनों है? क्योंकि शिव सिर्फ पुरुष नहीं, वो अर्ध नारीश्वर है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाही तो शक्ति की आवश्यकता पड़ी। शिव ने अपनी आधी चेतना से शक्ति को प्रकट किया और फिर जन्म हुआ अर्ध नारीश्वर का। एक शरीर आधा शिव आधा शक्ति, साकार रूप लेकिन परम सत्य का प्रतीक अर्ध नारीश्वर का अर्थ है ब्रह्मांड की संपूर्णता। शिव चेतना है, शक्ति क्रिया है। शिव मौन है, शक्ति गति है। शिव विचार है, शक्ति भाव है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। जैसे शरीर और आत्मा, जैसे दिन और रात, जैसे श्वास और प्राण, हर इंसान के भीतर ये दोनों शक्तियाँ हैं। एक निर्णय लेने वाली शिव और एक महसूस करने वाली शक्ति। जब ये संतुलन में होते हैं तभी जीवन में समरसता आती है। ना पूरी शक्ति काम करती है बिना शिव के, ना शिव सक्रिय होते हैं शक्ति के बिना। इसलिए अर्ध नारीश्वर सिर्फ एक देव नहीं, वो एक संदेश है। पूर्णता अलगाव में नहीं एकता में है। तो याद रखना, तुम में भी शिव है और शक्ति भी।
1: क्या ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं।
2: जन्म से होता है। यदि शुद्ध ब्राह्मणी में ब्राह्मण के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए
1: जी,
2: तो विद्या उसको अपने आप मिल जाती है। विद्या हवाई ब्राह्मण माज गाम। कर्म से कैसे होगा? तो अनियंत्रित हो जाएगा
1: जी।
2: एक दिन व्यक्ति चार कर्म करे तो चार चारों बन हो जाए क्या
1: जी? तो कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण हुआ लेकिन ब्राह्मणों कर्म नहीं कर रहा,
2: तो पतित ब्राह्मण। हमारे शास्त्र ने कहा
1: जी,
2: यदि ब्राह्मण होकर एक बूंद भी उसके मुख में शराब चली जाए
1: जी
2: और बकरी के दूध का फेन चला जाए
1: जी,
2: तो ब्राह्मण पतित।
1: ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से?

फिल्मी तर्जनी पे ये सुंदर सा गीत, इसमें गणेश जी की महिमा गाया गया है फिल्मी तर्जनी पर। Je kunt jezelf niet knuffelen. Je kunt jezelf niet knuffelen en je kunt niet op je eigen schouder uithuilen. Het leven draait om leven voor elkaar. Geef dus tijd aan degenen die van harte van je houden. Relaties zijn niet afhankelijk van geld, want sommige relaties leveren geen winst op, maar ze maken het leven wel rijk. ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों की मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर जीवन अमीर जरूर बना देता है।

तुम्हारे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे।

सिर्फ तुम, सिर्फ तुम फिल्म का नाम। जी हाँ, सिर्फ तुम फिल्म का नाम। और अलका याग्निक जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है ये सुंदर सा गीत। आपके लिए पेश किया जाता है आपका फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। छोड़ दो सब गम और शिकवे, छोड़ दो सब गम और शिकवे। हाँ, बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगने लगता है। आप क्या समझे?

एक बार फिर शामिल किया गया है अभिजीत भट्टाचार्य के इस प्रोग्राम में। शोहरत, शोहरत का पैमाना, शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता है मेरे यारो। शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो दिल पर राज करे वो भी मशहूर होता है।

यस यस यस माय लिसनर, जी हाँ आपने ठीक सुना कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हाँ हाँ मौसम में दस्तूर है तो जरूर से कंवरियां लोग के दिल मचलेगा। संदेश संदेश शिव दीन जी के आवाज में यहाँ से शामिल कर दिया गया है आज के प्रोग्राम में।

ये स्पेशल गीत आपके लिए पेश किया जाता है, स्पेशल स्पेशल चुन चुन कर गीत यहाँ से आपके लिए लाया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों।

0: इस बार आपके लिए हम सुनेंगे, मिलकर सुनेंगे कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
1: Yes, I. Yeah, me say that this special for. I'm not the lobby one for me. Yeah, top. We so far ago we meet all day, one day. Baka. Yeah, top. What you say? अपना बना।
0: इससे पहले हम यहाँ सुनेंगे ये सुंदर सा गीत, वो सुंदर सा गीत हम अभी के आपके लिए चलाएंगे।

0: जी हाँ मेरे दोस्तों, नदीम खान जी की आवाज़ में हमसे सुने, हम सबने सुने कि किसी से मुझे प्यार हो। यस्त मनीर ओम वातर तर द्रिंकन द्रिंक वातर तर वेल उसित water drinken terwijl u staat kan schadelijk zijn voor uw gewrichten en nieren. Lang drinken, langzaam, langzaam drinken. Niet doorslokken. Langzaam drinken geeft het lichaam de tijd om het water goed op te nemen. Lauw water op een lege maag in de ochtend. Het verwijdert gifstoffen uit het lichaam en versnelt het stofwisseling. Hou voldoende tijd voor en na de maaltijd. Drink niet te veel water direct na het eten, maar drink het pas na 30 minuten. Drink water voordat je dorst krijgt. Drink water voordat je dorst krijgt. Drink 8 tot 10 glazen water langzaam verspreid over de dag.
1: आज मैंने कुछ सोचा है।
2: कभी कभी ये काम भी करना चाहिए।
1: आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है।
2: मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है।
1: अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है।
2: और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है।
1: ये फाइनल है यार।
2: फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना
1: यार। पार्टनर, मेरा एक काम कर दे।
2: क्या?
1: वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए।
2: मैं क्यों करूं?
1: अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन?
2: देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर।
1: जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा।
2: घर तो तेरा होगा।
1: एक बीवी होगी।
2: तेरी होगी।
1: 7-8 बच्चे होंगे।
2: तेरे होंगे।
1: पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना, प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ।
2: यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली।
1: समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी मां होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा दे। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान? तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला?
2: साला नौटंकी, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। क्या बस बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा।
1: सच?
3: अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
2: हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर।
3: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
3: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
3: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कंबक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
3: है? तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी, एक बार शराब पी ली ना
4: फिर अच्छे बुरे का कहां होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
3: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
4: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए।
5: Dit is geweldig. Diabetes hield me nooit tegen. Het zorgde alleen voor meer zorgen. Maar Omnipod 5 werkt samen met mijn sensor om automatisch insuline toe te dienen. Wat helpt om mijn waarde binnen bereik te houden. En het is waterbestendig. We gaan ervoor. Meer tijd om te leven als diabetesbeheer minder tijd kost. Maak kennis met Omnipod.
4: Je juwe en sharaab ki aadat to do din mein chhoot jayegi.
3: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
4: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
3: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
4: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
3: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
4: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
3: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
4: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
3: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूं, कोई सौतेली माँ नहीं।
4: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
6: कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ भैया, जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
7: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
8: वो
7: अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
6: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय।
7: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
6: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
3: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम क्यों बैठे हो?
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया, देखो।
6: मेरा दिल भर चुका।
3: देखा, देखा तुमने?
4: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
3: क्योंकि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर से दोस्त नहीं देखा। जो
6: इसलिए मैं चांते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
7: कैसी मुसीबतें आएंगी?
6: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, When I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग।
7: अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
3: अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी।
6: अरे गाँव वालो, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूंगा। एक दो तीन।
3: मौसी हाँ कह देना
7: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
3: अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
7: हाँ कह दो मौसी।
3: हाँ जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
7: मौसी ने हाँ कह दी, भाई नीचे आ जाओ, आ जाओ।
6: मौसी से कौन शादी करेगा सालो, मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से
3: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
6: अरे गाँव वालो, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा।
0: कहते कि मौसी से कौन शादी करेगा, मैं तो बसंती के लिए आई हूँ। हाँ, इसलिए मरना कैंसल, जीना है मेरे प्यारे, जीना है।

0: सर, वो तो पहले ही से अटेंशन।
1: आप जानते हैं, जानते जानते हैं। कर लो, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा।
2: Operatie Back to School. Jij, schoolspullen. We willen geen verrassingen.
1: Ham, Andrezo ke zamane ke jailer hain. Aaj kal ke jaileron ki tarah nahin. Jo qaidiyon ko sudharne ki fikar mein lage rehte hain. Ham achhi tarah jante hain. Tum log kabhi nahin sudhar sakte ho. Are jab ham nahin sudhar sake to tum kya sudharoge? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। ये क्या?
0: परिंदा हुजूर, कबूतर, कबूतर।
1: निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो।
0: बड़ा अजीब आदमी है,
3: जेलर था, जासूस कौन है?
4: मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ,
3: हरिराम नाई।
0: हरिराम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो।
5: सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू।
6: अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को?
0: काट दिया।
5: सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए।
6: सुरंग निकाल कहां से रहे हो?
5: बैंक नंबर 9 के बराबर से।
6: कहीं जेलर को पता ना चल जाए।
5: किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
6: आओ,
0: बस हो गया।
5: साहब।
7: आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो?
0: साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है।
7: आओ, जेल में सुरंग?
0: क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे
1: हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई।
7: हमारी जेल में सुरंग?

0: तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? तो ये है सुरंग बनाने का औजार।
1: जेल में आ चुका है। हाँ, बस दो चार दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को
0: हमारे जेल में पिस्तौल
1: जी,
0: हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां, सिपाहियों
2: gezond. Kies echt. Kies
3: 3,
4: 2, 1,
0: en Baki, hamare saath hai.

0: की हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर।
1: चलो कैसे, तुम लोगों ने हिलने को मना किया है।
2: पहला ऑर्डर कैंसिल। चार

0: अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट।
1: पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ।

0: दरवाजा खुलवाओ।
1: जी सर।
0: दरवाजा खोलो।
1: यस सर।
0: ये रही चाबी, ये रहा पिस्तौल।
2: उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना?
3: अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दू तब ना, एक को दी मैंने पटखनी, केवल लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर वा, और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
3: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
3: अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि तूरमा भाई माफ कर दो, वो तुम्हें माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
0: फिर क्या हुआ?
3: अरे फिर हो रहा क्या था, ये तो इस्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने पिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी, धटा धट धटा धट, बहुत मारा बहुत मारा।
1: फिर क्या हुआ?
3: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
1: क्या कहा?
3: क्या कहा? क्या कहा मैंने? हाँ मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं, दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो, चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से, ये थे माशाल्लाह, तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी डन डन हो रही है।
0: सूरमा भाई।
3: हाँ भाई।
0: हम अपने 1000 रुपए लेने आए।
3: 1000 रुपए?
4: हाँ हाँ, 1000 रुपए।
3: अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो, ये देखो 200 के 10 है, गिन लो।
4: अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे।
5: कुछ डायलॉग आपके लिए पेश किया गया है और आगे में जो समय रहे तो जरूर से और भी डायलॉग आपके लिए यहाँ से हम पेश करेंगे।
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: Kijk, je vertrouwen kan bergen verplaatsen, maar als het breekt, dan verdwijnt niet alleen de kracht, maar ook de blik van wie je werkelijk ziet. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig, maar elke strijd brengt je dichter bij rust. Verhalen en dromen zijn wat voor bestaan, wanneer feiten stof en as zijn en vergeten. Er zijn dagen dat de zon niet opkomt in de lucht, maar in jezelf. En dat is genoeg om de wereld te laten stralen. Soms moet je breken om te

0: net even anders, gewoon perfect. Extra lucht.
1: Mere liye tum kaun? Kaise bataun main tumhe? Tum dhadkanon ka geet ho, jeevan ka tum sangeet. Tum zindagi, tum bandagi, tum roshni, tum taazgi. Har khushi, pyar ho, preet ho, manmeet ho. आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम. तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में. तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में. मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम. मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम. और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत. तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी. हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो. आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम. तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में. तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में. मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम. मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम. और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं.
2: नाना पाटेकर जी की आवाज में उन्हीं के गीत ये गाए हुए हैं. Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Jij moet beslissen wie er in je geest mag wonen. Kijk tegen die dotel waar ik mij aan me niet reh sakta. Uit de scherven van het verleden, uit de scherven van het verleden, zorgvuldig bijeengerap, ontstaat een mozaïek van wie ik nu ben. Eerst gebroken, daarna verweerd, toen geheeld en uiteindelijk weer compleet.

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM। फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और आम लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों, प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: और जाम, तो ये बात है दोस्तों, यानी कि और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

और आपको भी कुछ हुआ है नजगिल लता जी? किशोर दादा के ये गए हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।

में राम ने प्यासा। दोस्तों एक गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट खोर्दे वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए, और अगर आपकी चान कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है काला बाजार। के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है कुर्बानी, ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि कैसे। ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

और आकर दोस्तों महफिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्तों मुकेश भाई थी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र

लग जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

पसंद होगा वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारों ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे और लातवे खनिटे में और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा। मूवी का नाम है नागिन।

पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इश्क में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्क में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो, लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते हैं तदलुत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे। आशा परीख सुनील लतीश ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है, आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे हैं कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लता जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह ने तमन्ना इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

गौर मिल जाता है, हीरा मिल जाता है नैतिकी लता जी का ये जोंग थे। उसके बाद प्रेम चलते हैं मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन सस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमात्मा श्री मोहम्मद रफी और नैतिकी लता जी का सॉन्ग है जिसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

बांध लिया है मौफी के नाम थे। असली नकली के बांध पे हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाश्री मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

हे तुमसे अपने ही दिल से पूछो, हम चलते हैं और आगे। तो एक गीत यहां पर हम हमने प्लेयर पे रख चुका है अखियों के झरोके से, और ये एक मस्त भरी टॉप सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

और अनोखो अन अन अखियों की झरों की इसके बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और ठंड चाहे ठंडा लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

इस तरह से हमारे जिंदगी में शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीश।

दीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी आर्य साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानु अलका यागनी क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फन जॉनी नंबर वन।

कर दिया, और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिकेल लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर ये आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग, और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर, और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

फिल्म नागिन जो 1954 में पिक्चराइज किया गया है सुनने वालों, और इसमें जो स्टार कास्ट थे प्रदीप कुमार, विजयंती माला, जीवन मुबारक, और गीत हमको सुनाए लता जी, और साथ में देखे तो आशा भोसले जी और हेमंत कुमार जी के आवाज़ में यह सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इस बार है अकेली मत जाइयो फिल्म बैजू भौरा से।

इस बार है अकेली मत जाइयो। फिल्म का नाम सिंगर है लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब।

हवा, ये मस्ताना मौसम, जैसे हमने बताया गीत के शुरुआत में, तो लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अकेली मत जाइयो फिल्म का नाम, वही फिल्म अकेली मत जाइयो से।

एक सवाल आप करें, एक सवाल मैं करूं। जी हाँ, लाइफ ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप चुने।

लता और रफ़ी जी ने सुना दी कि कर गए जिसका इंतज़ार, देखो लाई मेरा प्यार। फिल्म में जो स्टार कास्ट थे राजेंद्र कुमार और जमुना, आप सोचते होंगे मैं तो कह दी फिल्म पर नाम नहीं बताई, तो यहाँ से नाम है फिल्म हमराही। खुद से वादा कर, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, नहीं रहोगे कदम। खुद से वादा कर, खुद को ही ज़ुबान दे कि नहीं रोकेंगे अपना कदम, जब तक पहुँच नहीं जाता, जब तक पहुंच नहीं जाता मुकाम पर।

कोयल बोले और दुनिया डोले, हमको सुनाए सुने वालों लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी। और उसी फिल्म का नाम सरगम, फिल्म सरगम से हम आपको लेकर चलते हैं वही मशहूर गीत जो यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे। और गीत का बोल है दफली वाले दफली बजा।

हाँ बस उधर बेकरारी किस लिए है। बलबीर और मोहम्मद रफ़ी जी ने हम सबको ये सुंदर सा गीत और सुनाए हैं। दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है, यानी कि त्वे फॉर्मख, दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है किंतु स्वयं का कोई विकल्प नहीं है। ये बेंत अलेन एन एन एन पर्सोन, एन यूनिक पर्सोन, इसलिए सबसे अधिक स्वयं को स्वस्थ व प्रसन्न रखें। अपने आप को खसोंद एन खलुक रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।

ये गोटेदार लहंगा जो हमको गाकर और सुना दी है वो है रफ़ी जी और साथ दे रही थी आशा भोसले जी ने।

थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।

फिल्म मिलन से निकाला गया सुनने वालों ये सुंदर सा गीत जो लता जी फरमाई कि तो है सवरिया ना ही खबरिया। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, और मेहनत करने से, जी हाँ, और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमि देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप इस समय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून हैं और आज का विषय, उसके बारे में थोड़ा से मैं रख देता हूँ कि साल 2023 में 150 साल हुए हमारे पुरखों जो भारत छोड़ करके हमें और जाकर के सूरीनाम देश में अपना कंतरा काटे और वहाँ से आज हम सब उसकी बीच है हम सब और यहाँ हॉलैंड में भी आकर के रह रहे हैं। क्या हम उसके बारे में कभी चिंतन किए कि हमारा पर आजा, हमारा वृत्त आजा, हमारा वृत्त आजी कौन थे? तो इस अंतर्गत में कुछ मटेरियल भारत से भी और हम सब इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे अभी। और ख़ास करके मैं आपसे गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि अपना गांव जहाँ से हमारे पर पर पर दादा जो भारत को छोड़ कर के गए थे, वहाँ से और पंडित सूरज राज जी जो हम सब के साथ और अभी आगे कार्यक्रम में उसे टेलीफोन द्वारा और सम्मिलित करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी जो भारत से लेकर के और मूर्ति जो सूरीनाम देश में गए हैं वहाँ पर स्थापित किए हैं, इन बातों के हम सब अभी आगे में सुनेंगे। ये ख्याल रखना कि कुछ मटेरियल जो भारत में बनाया गया है उसे भी कोशिश करेंगे और अभी आपके लिए रखने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।

0: तो ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये कार्यक्रम जो हमारे पुरखों जो 150 साल पहले सूरीनाम देश को और प्रवेश किए है, जो भारत देश को छोड़ करके सूरीनाम देश को गए हैं और वहाँ जा करके हमारे जो परिवार वहाँ शुरू हुआ सूरीनाम में, जिसका और बीच हम सब है आज इस कार्यक्रम में, उसके बारे में कुछ संदेश रखा जाएगा। ऐसा हुआ कि हम सब तैयार होकर और भारत देश पहुँचे और अपना परिवार के खोज में, तो परिवार की खोज खोजते खोजते और बहुत जो मेहनत से वो स्थान को प्राप्त किए जहाँ से हमारे पुरखों, हमारे पर दादा अख्तिन ससन नई खंतक में, उस समय जब बोट अबे जहाज जो होते थे लकड़ी का और बनाया जाता था, जिसे हम सैल बोट जो हवा के माध्यम से और कुछ 3 महीना तक समुद्र के लहरों द्वारा भारत को छोड़ करके सूरीनाम को पहुँचे, इन फीरन तख्त दाख जो रईस दूर हुए थे, तो वहाँ जा कर के पहुँचे और वहाँ अपना कंत्राक जो होते थे उसको काट करके और अपना फिर परिवार घर गृहस्थी बढ़ाए। तो हम भारत देश में पहुँचे और पहुँचे कहाँ पर, एक स्थान है जिसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है गोंडा, और गोंडा में गोंडा भी ठीक से और देखा जाए कि गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है और एक दौरप का नाम है भी, और दौरप में भी जो बड़े दौरप होते हैं उसमें भी छोटे छोटे और अपना इलाकाएँ होते हैं। तो एक होता है करगोपुर, और करगोपुर में हम लोग प्रवेश किए और वहाँ जबकि जा करके खोजा गया तो और मिला एक पंडित जी, और उसके साथ हम कार्यक्रम में पंडित सूरज जी के साथ कार्यक्रम में आगे हम प्रवेश करेंगे।
1: देखिए, जब आप पढ़े लिखे तो आपको ये तो क्लियर होगा कि ब्रह्म से
2: हम लोग
1: और शक्ति से
2: जी
1: हम लोग का प्रादुर्भाव हुआ।
2: सही बात।
1: सप्त ऋषि आए,
2: सप्त ऋषि
1: सनक सनंदन सनत को जो आए,
2: हाँ।
1: 4 और उसके बाद पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: जो है तो 7 और 5 12 लोग हो गए।
2: हो गया 12।
1: 12 से हम लोगों का शुरू हुआ पूरे सृष्टि का निर्माण
2: शुरू।
1: मनु शत्रुपा आई, इनके द्वारा
2: हाँ जी
1: बना सब, ठीक है
2: जी।
1: अब जब हमारा गोत्र ब्रह्म है
2: जी,
1: हमारा गोत्र ब्रह्म है, फिर हम इधर उधर भटकने की जरूरत क्या,
2: जरूरत
1: हमारा गोत्र अच्युत है। अच्युत गोत्र यानी भगवान विष्णु का गोत्र होता है।
2: हाँ जी,
1: तो भगवान विष्णु का गोत्र अच्युत है, तो आप ये गोत्र लेकर के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि निज गोत्र मेरा ब्रह्म है। जो हमारा गोत्र है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई गोत्र नहीं है।
2: सही बात।
1: सप्त ऋषि भी तो ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए।
2: एकदम बिल्कुल।
1: तो जब ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, तो फिर जो है अब हमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं।
2: बिल्कुल ना, पर माथा पच्ची नहीं करेंगे तो कैसे आपके साथ यहाँ बैठे।
1: हाँ, ये सही।
2: तो बोले प्यासा को आप समझ गए। तो मैं इसलिए आपका अप नंबर हो गया ना।
1: चलिए,
2: और
1: हो
2: जो
1: गया।
2: इस समय हम लोग यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं
1: जी, जी,
2: ये नहीं होता भी
1: जी। जी, सही है।
2: समझ गया।
1: देखिए, ईश्वर की कृपा थी, मुलाकात ये, हो गई।
2: ये जो होना है वो होना है, और ये बड़ा ये तो मुझे, अरे यही तो मुझे देखना था।
1: दर्शन करवाते हैं। देखिए, सबसे पुराना मंदिर है।
2: हाँ जी,
1: ये उदासीन आचार्य है, उदासीन आचार्य श्री चंद्र भगवान नानक जी के लड़के।
2: हाँ जी,
1: तो नानक जी का ये मंदिर है
2: जी,
1: शिव जी का मंदिर है।
2: ये तो जो सोचा भी नहीं था।
1: हाँ,
2: ये है मंदिर पुराना।
0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, तो ये आवाज जो एक वहाँ करगोपुर में हम सब पहुँचे पुलिस खाना के पास और जो प्रश्न किए तो वहाँ ये पंडित जी को हम सबको मिला दिया गया। और पंडित सूरज जी जो अपना मोटरसाइकिल पे आए थे और हमने वहाँ का वातावरण हमने वहाँ का और पहुँचते हुए वो जो अपनापन होता है वो महसूस किया और मोटरसाइकिल पे पंडित जी के साथ बैठ गए। और जैसे कि मोटरसाइकिल खींच रहे हैं आगे के ओर तो सड़क पे देखने को मिलता है पत्थर का सड़क था, पर पत्थर का सड़क पर आप ऐसा महसूस कीजिए कि पत्थर का सड़क पर फूलों का और गुलदस्ता बनाया गया था। सुनने वालों और मोटरसाइकिल पे बैठे चल रहे हैं, आगे में देखते हैं कि एक महिला जो सड़क के किनारे खड़ा होकर के और लोटा जो कहते हैं पात्र में जल सूर्यदेव को अर्पित करते हैं और आगे में गाय का तबेला दिखाई देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक व्यक्ति जो जैसे सूरीनाम में हम सब गर्मी में और धान काटते थे वहाँ एक धान काट रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो अपना ही गांव में जो महसूस होता है कि केन का झाड़ा यानी कि यहाँ पर केन ढेर सारे हैं और आगे मोटरसाइकिल पे बढ़ते हैं और फिर जहाँ कुछ झुंड के साथ लड़के बैठे हुए अपने बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी दूरी पे वहाँ जो जैसे कि गांव के सबसे पुराना मंदिर और उसका दर्शन हुआ। तो अभी इस बात के बारे में और भी चर्चा होगा, पहले हम मंदिर का दर्शन करते हैं।
2: जय हनुमान बाबा, क्योंकि पुलिस वाला ने भी कहा कि भगवान तो आप ही है, ऐसे ही कहा ना। जय हो। देखो यहाँ ये मंदिर का नाम शुभ नाम का
3: जय हो प्रभु। पहले माथा तो टेक ले।
2: हो माथा टेक ले। जय हो प्रभु।
1: सर झुका के
2: ओ लगत तो टप पता चला।
1: आइए दर्शन कर लीजिए हनुमान जी महाराज का।
2: हाँ हनुमान बाबा फोटो वो बना लेते हैं।
1: आइए फोटो खिंचवाते हैं।
2: हनुमान बाबा हम लोग आ गए बहुत दूर से। जय हो।

0: हनुमान जी महाराज है सबसे पुरानी मूर्ति है।
1: बहुत पुराना मंदिर भी जैसे आपने कहा,
0: बहुत पुराना मंदिर है।
1: हाँ।
0: ये जो है भगवान श्री चंद्र नानक पंथ का ये मंदिर है। हनुमान जी महाराज सीताराम परिवार से इत्यादि विराजमान है। आगे चलिए आपको शिव जी के मंदिर दिखाता हूँ। हाँ एक मिनट साथ में हो जाए, फोटो हो जाए।
1: सुने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और ये कार्यक्रम में जो रखा जा रहा है कुछ बेल्द जो टेलीफोन द्वारा वहाँ पर बनाया गया, उसे हम सब भी इस कार्यक्रम में रख देते हैं ताकि आपको वो महसूस हो सके कि ये वहाँ पर का वातावरण कैसे हो गया था और अपना परिवार के खोज में जो हमारे साथ और भी लोग थे और जा कर के कितना खुशियाँ महसूस कर रहे थे। हम सब कुछ बेल्द मटेरियल है, शायद बेल्ट मटेरियल देख करके आप और भी समझ पाते, पर वो तो रेडियो द्वारा नहीं रखा जा सकता है। पर कुछ कोशिश है कि हम अपना और संदेश आपके साथ बांट सके। जो हम सब अभी हनुमान जी का मंदिर में दर्शन दिए, एक ऐसा मंदिर, एक पुराना मंदिर जो भारत के और करगोपुर में, जिसमें और प्रवेश करते ही मन एकदम पुलकित हो जाता है। तो हम पंडित सूरज जी से अभी और भी संदेश सुनेंगे। यह मंदिर गांव में करगोपुर, और हम लोग ने यहाँ पहुँच गए हैं। ये जय शिव शंकर भवानी।

0: सुनने वालों, जैसे कि हम सब मंदिर का दर्शन किए, हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर जो वहाँ है, और उसके बाद में मंदिर से बाहर निकलते तो एक बड़ा सा वृक्ष था, और बड़ा सा वृक्ष के बगले में एक तालाब, तालाब वाटर फाइफर जो वहाँ पर बनाया गया है, कितना सुंदर रूप से जो और है, और उसके पाछे में एक समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है, इसे तो हम सुन करके और चकित हो गए, पर वो समाधि के बारे में बताया गया और उसके बारे में तो एक अलग सा कार्यक्रम हम रखने वाले हैं और ज्योति का प्रकाश के अंतर्गत। पर समाधि वहाँ पर एक संत का वहाँ एक समाधि बनाया गया है, और उसे और देख करके भी दैट इज ओकन हेल बिसोंदर है दच दत कांसिन एंड दत दत बस्तात इन इंडिया, ऐसा ऐसा चीज़ों जो हम और भी शायद तीर्थ स्थानों पे नहीं देखेंगे, ये सुंदर सा और स्थान से देखे। तो सुनने वालों, आगे का कार्यक्रम में हम सब बढ़ रहे हैं, और वहाँ जो मंदिर के पास एक छोटा सा शहर है जिसे तौन सिटी कहते हैं वो लोग, जो बखेन न्यार नई खंतीन होंदत में जो अभी ब्रिटेन का राज चल रहा था वहाँ, और उसे तौन सिटी बनाया गया एक छोटा सा गांव में। और ऐसा समझिए कि एक रास्ता जो पत्थर का है और छोटे छोटे दुकानें बगल बगल करीब करीब में है, और सब एक दूसरे के वहाँ पहचानते हैं, क्योंकि मैं पंडित जी के साथ वहाँ और प्रवेश लिए है। मंदिर के बस कुछ मलिटो यानी कि 2-3 मलिट का रास्ता था।
1: ये गांव है हम लोग,
2: ये खरगुपुर है,
1: खरगुपुर गांव,
2: खरगुपुर नगर पंचायत,
1: नगर पंचायत। और ये हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं मार्केट,
2: नहीं अभी मार्केट तो उधर जाएंगे,
1: वो उस तरफ है,
2: टाइम में है, गुरुजी गए हैं मार्केट में, हम जब तक जो घूम आएंगे तब तक जो है जो वो भी आ जाएंगे, गुरुजी आएंगे तो उनसे भी हो जाएगी आपकी मुलाकात।
1: अच्छा
2: आइए चलते
3: हैं।
1: समाधि
3: सेतन वर्ति नाम लख बखराफ अध्ययन वर्ग नहीं है क्रीम तो मलित वर्ग के मार्ग पास होगा समय का दिनामिश ट्रांसलेट
2: जी जी जी जी
1: ये राजेंद्र जी बहुत चलाक आदमी है, ये ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया। पंडित जी कौन सा पूजा होता है
2: यहाँ? बाबा श्री चंद्र का पूजा होता है, और यहाँ पे भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी महाराज, सीताराम परिवार, ये सब जो है विद्यमान है इस मंदिर पे। ये उदासीन संप्रदाय का मंदिर है, राम जानकी मंदिर उदासीन आश्रम खरगुपुर के नाम से विख्यात है। इसमें जो भी लोग अपनी मनोकामनाओं को मान करके यहाँ आते हैं और उनके कार्य जो है पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके भगवान श्री चंद्र उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है। और हम सभी, हमारा बड़ा भाग्य है कि हम जो है मंदिर के सेवादार के रूप में बाबा श्याम सुंदर दास तूफानी बाबा जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके सानिध्य में हम सही मंदिर पे रहते हैं। आप लोग आए हैं इतने दूर से, आए कहाँ से आए हैं आप?
1: होलैंड,
2: होलैंड जर्मन के पास,
1: जर्मन के बगल बिल्कुल करीब है।
2: तो आपकी जिज्ञासा यहाँ आने की कैसे?
1: जिज्ञासा ये हुआ कि कितने बार देखा कि लोग अपना खोज किए
2: जी,
1: मुझे भारत से कुछ 2001 से संबंध है, और मन में ये
2: वही
1: उठा
2: पर, वही जो है हॉलैंड जहाँ रहते हैं वहीं,
1: हाँ
2: तो वहाँ करते हैं,
1: तो वहाँ पर ये एक से हुआ दो, यानी कि ऐसे आगे बढ़ता गया।
2: ये मार्केट यहाँ से प्रारंभ होता है,
1: वो मार्केट तो आपने कहा था 10 मिनट का, ये तो 2 मिनट
2: अब स्टार्ट हो गए।
1: हाँ ये तो मार्केट है,
2: ये हमारा मार्केट है, और यहाँ पर जो है छोटा सा एक कस्बा है, और यहाँ से आगे 2-3 मीटर जाएंगे श्रीनाथ का मंदिर।
1: अच्छा,
2: जो कि बहुत ही भव्य है, दिव्य है, एशिया का नंबर एक शिवलिंग है, सबसे ऊंचा शिवलिंग है।
1: अच्छा,
2: अगर आप उसके दर्शन जो है करना चाहें तो अभी बाहर से है रास्ता, वहाँ से चलते हैं, वहाँ पे दर्शन
1: कीजिएगा। तुक ले लेते?
2: नहीं वो तो है ना,
1: ओ
2: आपके पास से वही गाड़ी, इसको बढ़िया हाईवे रोड बना है। अब योगी जी के शासन में जान लीजिए यहाँ का बहुत बढ़िया विकास हो गया। योगी जी ने अयोध्या में जिस तरीके से महोत्सव मनाया है, अब जान लीजिए पूरा जनता जागरूक हो गई
1: जी,
2: आज लोग अपने धर्म को पहचान रहे हैं, सनातन धर्म क्या है इसके बारे में लोग जान रहे हैं, आज बच्चा बच्चा जो है अपने धर्म को पूर्ण रूप से जान रहा है। तो ये बहुत बड़ा अलग जगह है आदरणीय योगी जी के, उसमें
1: खरगोपुर बाजार है ये सुंदर से।
0: दोस्तों जैसे कि अभी आपने ये कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो हम सब टेलीफोन द्वारा वहाँ से और बनाए थे और इसी कार्यक्रम में रख रहे हैं ताकि आपको ये महसूस हो पाए और वहाँ का वातावरण किस प्रकार से है। दोस्तों ये हुआ कि हम सब वहाँ पर पंडित जी के माध्यम से हम सब वहाँ पहुँचे जो उस शहर का सबसे अवस्था वाला व्यक्ति था। वो बाबा जी कुछ 100 साल का था और उसके पास हम सब जा कर के पहुँचे और वहाँ ये प्रश्न रखे कि आप हम जिस जिस नाम से जुड़े हुए हैं जिस नाम को चला रहे हैं उस नाम को कोई व्यक्ति को वहाँ पहचानते हैं या नहीं। और वहाँ इस बात को भी ये पता चला कि ऐसा हुआ जो 150 साल पहले के बात होते हैं सुनने वालों, तो उस समय से और आज तक भी काफ़ी और बदलाव भी आ गया है देश में। कोई कोई बिल्कुल पूरा परिवार वो और स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान से चले गए हैं और कोई कोई भी अभी तक वहाँ रह रहे हैं। और जैसे कि बाबा जी हम सबको और अपना संदेश सुनाए कि 5 पीढ़ी तक उन्होंने ऐसा दर्शन दिलाए कि कैसे एक ही व्यक्ति जो अपना जिस प्रकार से वो बाबा जी रह रहे इतना अवस्था का हो गए हैं और उनको इतना व्यक्ति को पता था।

0: सुनने वालों, जैसे कि हमने कार्यक्रम बना रहे हैं और कार्यक्रम जो हमारा गांव से जुड़ा हुआ है, भारत भारत में एक, जैसे कि अभी आप सुन भी लिए हैं कि ये हमारा जो जहां से हमारे पुरखों जो आज से 150 साल पहले छोड़ करके सूरीनाम को गए थे और वहाँ का त्योहारों कैसे मनाया जाता है, तो हम इस समय लाइन पे आ रहे हैं हमारे श्री पंडित सूरज देवराज जी से, और जो हम सबको वहाँ पर का वातावरण वहाँ के और संदेश वहाँ से और हम सब के सारा वृतांत जो सुनाए हैं, तो हम पंडित सूरज देव राज जी को और लाइन पे ला रहे हैं, और ताकि हम सबको जो वहाँ अभी तक जो अपना गांव है वहाँ का वातावरण, वहाँ कैसे वो त्यौहार, जैसे होली हम सब यहाँ मनाते हैं, जैसे दिवाली हम सब यहाँ मनाते हैं हॉलैंड में, सूरीनाम देश में जो हमारे पुरखों लेकर गए थे वहाँ से हम सब यहाँ आकर के मना रहे हैं, तो हम इस समय लाइन पे आ गया। मैं देख रहा हूँ कि सूरज पंडित सूरज देवराज जी, और पंडित सूरज जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ रहे इस कार्यक्रम में। तो सूरज जी, भला ये बताइए कि जो हमारे पुरखों लेकर गए हैं और अभी तो हम सब उसी तरह से चला रहे हैं कार्यक्रम, पर हमारे गांव में कैसे और करगोपुर में कैसे त्यौहार जैसे होली पे खास करके मनाया जाता है?
1: जी जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे खरगोपुर में गोंडा जनपद है, गोंडा जनपद का नगर है खरगोपुर, जो 1904 में अंग्रेजों के समय पे भी टाउन एरिया रहा है, और उस वक्त से हमारे यहाँ परंपरा चली आई है, कोई ये हमारी परंपरा तोड़ नहीं पाया है। और ये प्रभाव जब हमारा देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद से हमारे खरगोपुर में, जैसे मथुरा में होली होती है, ऐसे हमारे यहाँ लोग कम से कम 8-10 जिलों के लोग हमारे यहाँ होली देखने आते हैं। होली में खासकर पर्व ऐसा पर्व मनाया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दिन में हम लोग जुलूस निकालते हैं, लोग ग्रुपिंग वाइज जो है एक भारी संख्या में पूरे नगर के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर के ढोल नगाड़े के साथ में, साउंड ऑन के साथ में जो है वो पूरा जुलूस निकालते हैं, और जहां जहां होलिका दहन की जाती है वहां वहां जाकर के दर्शन करते हैं, उनका भभूति लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम होली खेलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुजिया मिठाइयों जो है अंबाल लगी रहती है, हर लोग एक दूसरे से मिल करके खाते पीते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब शाम होती है, शाम होते होते एक नई रोशनी उदय होती है और हमारे यहाँ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, और एक नई राधा कृष्ण के साथ, जो भगवान भोलेनाथ के साथ, पार्वती जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में एक दिव्य भव्य झांकी निकाली जाती है, जो पूरे नगर के क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग, आसपास जिलों के लोग आते हैं, और पूरे प्रशासन के साथ जो एडिशनल एसपी एसपी लोग रहते हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, और दिव्य और भव्य झांकी होती है, और ये पूरे नगर का एक जो है एकमात्र ऐसा त्योहार होता है, या आपके खरगोपुर का, विशेष रूप से खरगोपुर में, आसपास जिले में ऐसा कार्यक्रम भी नहीं होता है।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित सूरज जी की, जैसे कि हम लोगों ने भी फिर भी कुछ उसमें से मैं निकाला हूँ कि जैसे होली में अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि खाने वाला पकवानों में और गुजिया, तो ये भी आज तक हम लोगों मनाते और बना कर के खाते हैं इस त्यौहार में। पर जिस प्रकार से और जुलूस निकलते हैं, जैसे कि अबतोख बोले जाते हैं, और हर एक स्थान पे जहाँ पर जैसे पंडित जी अभी और चर्चा किए कि जहाँ होलिका दहन यथा होली को और दहन मनाया गया, वहाँ वहाँ जा कर के और सभी मिल कर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। पर पंडित जी ये बात हो जाता है कि हम लोगों भी सूरीनाम देश में भी कुछ देहाते थे, और जहाँ पर कुछ 60 लोग का परिवार रहते थे, और वहाँ घर घर जैसे क्रोनम्बेरो सूरीनाम में एक स्थान है, उसे क्रोनम्बेरो कहा जाता है, वहाँ भी घर घर जा कर के और ये जो चौताल आदि किया जाता था। तो जैसे कि अभी आपने चर्चा की है, तो वहाँ का और ऐसा वातावरण वहाँ का करगोपुर का कैसे किया जाता है?
1: यहाँ पर जो है जितने भी लोग होते हैं वो अपने स्थान पे जाकर के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, और चौपाल लगा करके जो है हारमोनियम के साथ ढोलक के साथ बढ़िया जो है खेले अवध में होली, ऐसे करके गानों के साथ में जो है और तमाम प्रकार के जो है बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं, और हर लोग जो है हंसी खुशी माहौल के साथ ऐसे ही जो है होली मनाई जाती है, और ये 8 दिनों तक लगातार चलता है। 2 दिन पहले से ही तैयारी होने लगती है कि हाँ भैया होली है, होली है हमारे यहाँ बहुत विधिवत तरीके से, और हमें बड़ा गर्व है कि आप वहां पर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले और चौपाल लगा करके हर जगह जा करके लोगों से होली मिल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी विशेष बातें हैं। और

0: ये तो गर्व का बात हो जाता है पंडित जी ऐसा बात सुनने में, क्योंकि हमें जरूर जो हमारे पुरखों ने लेकर गए भारत से और आज तक हम लोगों ने करते आए हैं, और हर हर जैसे कि आप लोगों पूरा सब जगह जा पाते हैं, तो हम लोगों का यहाँ जो शहरों थोड़ा दूर दूर से है, जैसे कि देनहाग, रोटरडम, लेवार्ड और अम्स्टरडम, इन शहरों में होलिका दहन का और मनाया जाता है, यानी कि होलिका दहन किया जाता है, पर हम लोग एक शहर से दूसरे शहर अभी तलक इस बात पे कभी चिंतन नहीं किया गया था। और ज़रूर इस जैसे कि आप कह रहे हैं तो हम सब के पास ज़रूर वो फैसिलिटी है, तो हम एक दूसरे के साथ ज़रूर जा करके इसका, और महत्वपूर्ण बात जो अभी आपने कहे कि एक दूसरे के साथ जा कर के मिल करके और न सिर्फ गुजिया खाएंगे पर खूब एक दूसरे के गुलाल भी लगाएंगे। पंडित सूरज जी, मैं एक प्रश्न और रखने वाले हैं आपके साथ, पर ज़रूर एक इस बात को कहना चाहूँगा कि चौताल जो अभी हम लोग यहाँ चलाते हैं और जो होलिका जैसे कि आपने कहा 8 दिन तलक वहाँ होते हैं, तो हम लोग यहाँ जब उसका कोशिश किया जाता है बुढ़वा मंगर तलक, उसके बारे में आपके क्या संदेश है?
1: ये बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का, वही ये सेम चीजें हैं। आप तो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसको जो है यहाँ की जो परंपरा है आप वहां निभा रहे हैं। होली का त्योहार ही इसीलिए होता है कि अगर मन मुटाव हो गया है, मन में मैल जग गया है, आभास हो जाता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो है आपसी प्रेम सौहार्द बन जाता है, और एक दूसरे से मिल करके आपस में जो है बैठ करके जो जितनी बातें होती है एक दूसरे से परस्पर मिलन होता है। कहते हैं कि मन की आटी अटपटी झटपट दर्शन, जैसे अटपट मिट जाता है झटपट दर्शन हो जाता है। तो जब प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीश दिए ले जाए। जब आदमी झुकता है दूसरे के प्रति, गुजिया क्या है, गुजिया में मीठापन होता है, जब मीठा आदमी मीठा खाता है तो मिठास आता है। ऐसे ही एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल करके, और प्रेम से मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल जाते हैं, सारे आपस की जो तनातनी होती गायब हो जाती है। उस दिन हम लोग प्रेम से मिलते हैं और जो है अगले साल के लिए एकदम से वादा करते हैं कि पूरा जीवन आपके साथ हम जो है ऐसे ही प्रेम स्पर्धा बना रहे। चलो।

0: अति सुंदर रूप से आपने गुजिया का संदेश भी रख दिया पंडित सूरज जी, जो हम शायद इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जो मीठापन है और ख़ास करके। पर इसमें एक छोटा सा प्रश्न और, क्योंकि मन में ये लालच बढ़ रहा है कि आपसे प्रश्न करते रहूं, पर हमें भी अपना रेडियो का समय पे ध्यान देना है, तो एक छोटा सा और प्रश्न रखता हूँ कि हम सब जो चौताल का और जो आखिरी वाला हम लोगों ने जब वहाँ से जो इस घर से यानी कि कहीं मंदिर है तो कहीं किसी के घर पे जा कर के चौताल करते हैं, तो आखिरी वाला हम लोग गाते हैं कि सदा आनंद रहे वो द्वारे मोहन खेले होली हो, तो वो अभी वहाँ गांव में भी होते हैं?
1: जी जी जी, गांव में होता है अब धीरे धीरे आधुनिकता के दौर पे, लेकिन फिर भी जो है हमारे बुजुर्गों ने आज भी जो है सजोए रखा है। हम सब युवा पीढ़ी को संदेश देते रहते हैं और हम सभी भी उसी को आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास में रहते हैं, और गांव गांव सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का, और साथ साथ एक कार्यक्रम और का जो है हम लोग कराते हैं कि जैसे होली हो जाए, होली होने के जैसे अब इस वक्त होली हो चुका है, लेकिन हम लोग 8 दिन तक जो होली मनाते हैं वो प्रयास करते हैं कि कम से कम 8 एरिया में जा करके नए नए लोगों से मिल करके उनको अपना बना करके अपनी तरफ आकर्षित करते हुए और अपना प्रेम सद्भाव का शिक्षा दे सके, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके, इसी को जो है होली कहा जाता है। होली मतलब होली, उसके साथ होलिया, वो मेरे साथ होले, प्रेम बना रहे। जी

0: संदेश सुनने वालों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अपना गांव, हमारे अपना गांव जो करगोपुर है भारत देश, और ये बात है कि जरूर आप में ये दिल चस बनाने के लिए हम सब ये कार्यक्रम को रखते हैं। 105 तक यार 150 साल होंगे जो हमारे भारतवासी, हमारे पुरखों जो अपना और भारत को छोड़ करके सूरीनाम को गए थे, और सूरीनाम में जाकर आज कहीं आखतीन 1873 से पीढ़ी जो सूरीनाम देश में, सूरीनाम से भी और होलांद देश में आए, और कभी ये प्रश्न रखिए कि मैं किसका बीच हूँ, मेरे और जब वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो आज हमारे साथ जो अपना गांव से जुड़ा हुआ पंडित सूरज देवराज जी, जो हम सब के लिए अपने ओर से संदेश दिए, तो पंडित जी कुछ और संदेश आपके ओर से है और हम सब के लिए, जो खास करके हमारे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों, जो आपके आवाज़ दुनिया में 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो कुछ और संदेश से हम सबको सुनाइए।
1: आप सभी को, जितने भी लोग हैं सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आनंद पूर्वक ऐसे ही बुढ़वा मंगल तक, जैसा आप लोग परंपरा बनाए हैं, ऐसे मनाते रहें, और ये होली सदा होली बनती रहे, सदैव प्रेम मिठास बना रहे, सदैव जो है एक दूसरे के प्रति अनुराग बना रहे, सनातन में श्रद्धा बनी रहे, यही शुभाशीष यही आशीर्वाद आप सभी का, प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। जय श्री राधे राधे।
0: सुनने वाले, सुंदर रूप से हमारे साथ जुड़े रहे पंडित सूरज देवराज जी, जो करगोपुर भारत से और हम सब के अपना, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अपना गांव से, जहाँ से हमारे पुरखों छोड़ करके और देश को और सूरीनाम गए थे, और वहाँ का संदेश हम सबको सुनाए। पंडित जी को एक बार से फिर हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ भी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा संदेश लेकर हमारे परम आदरणीय पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो एक महान यज्ञ सूरीनाम देश में करके आए हैं, और उनके ओर से एक ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया जिसे हम थोड़ा बेचैन हो गए कि कैसे वो और किए। तो पंडित जी, सर्वप्रथम आपको स्वागत किया जाता है फहन हिंदुस्तानी रेडियो में, और जैसे कि अभी आपने हमें ये संदेश दिए कि आपने भारत को गए और भारत से नंदेश्वर महाराज को लेकर के सूरीनाम गए, तो पहले आप अपना एंट्री डालते हैं। पंडित जी, आपको स्वागत किया जाता है।
1: फाहन रेडियो की श्रोतागण, आप सभी को सब हृदय नमन सप्रेम नमस्कार। जैसे अभी आपने कहा है तो हम गत दिसंबर को गए थे भारत, वहां से शिव मंदिर जो शिव मंदिर वेखनार पे पोत का है हंसू पे, तो उन्होंने निवेदन किया था नंदीश्वर भगवान को वहां से लाने के लिए, तो गए थे भारत और वहां से वो नंदी महाराज को ले करके निकले बेंगलोर से, बेंगलोर से अबू धाबी, अबू धाबी से पहुंच गए फिर हॉलैंड में, तो कोई प्रकार के विघ्न बाधा इत्यादि नहीं उत्पन्न हुआ, और फिर यहाँ से हॉलैंड से उनका जो अंतिम स्थान था जहाँ उनकी स्थापना होने वाला था वो था शिव मंदिर वेखनार पेपर पॉट सरनाम हंसू में। तो यहाँ की जो है कई हजार किलोमीटर बाबा ने पार किया, और ये चिंतित थे हम कि कैसे बाबा को हम साथ ले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है स्थान वहां मंदिर में लोग बना चुके थे उनको वहां स्थापना करने के लिए। तो जबकि आप लोग को पता है कि हवाई जहाज में जाने से पहले सिक्योरिटी जो है संरक्षण जो है तो बहुत बहुत सख्त है, और मैंने सोचा कि चलो अगर बाबा को जाना है तो बाबा ही इसी सिलसिला में इस समस्या में हाथ बटाएंगे। तो सिक्योरिटी पहुंचकर मैंने उन लोगों को संकेत कर दिया कि देखो ये हमारे बाबा हैं, वो मंदिर के लिए हम साथ ले जा रहे हैं, और आपसे निवेदन है इसको आप देखें, और बाबा की ही कृपा हुआ, बाबा ही तैयार हुए, बाबा ने सब आयोजन कर दिया कि सिक्योरिटी ने उनको सिर्फ स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन्होंने कहा मनेर यूमाख्यूरख, आप अपना जो यात्रा आप जारी कर सकते हैं। तो बाबा को भारत से ही हंत बखाशे में हम साथ लेकर के पहुंचे हैं सूरीनाम, और जबकि इस यज्ञ के सिलसिले में वहां की जो योगदान देने वाले हैं और जो उपसभापति है जो बहुत जनता के लिए और धर्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और बाकी जो हैं मंदिर के सदस्य और जो सभापति हैं और अन्य लोग, वो जब मूर्ति का खुलासा हुआ तो वो लोग वहां रो पड़े, वो भावुक हो गए, और बाबा को पहले अभिषेक करा करके दूध दही जल गंगा जल और शहद और शर्करा घी के साथ उनको पूरी तरह अभिषेक किया, और वहां से घंट नाद और शंख नाद से लेकर के उनको अपना स्थान पर ले जा करके वहां उनका स्थापना हुआ। बस बिल्कुल बाबा की ही

0: रूप में आप देखेंगे, सो हुआ ये। और बड़ी बड़ी श्रद्धा और बड़ी प्रेम के साथ ये यज्ञ को जो है लोग सुसंपन्न किए। और जबकि हंसू में पहली बार ये जागरण का प्रोग्राम महाशिवरात्रि के अंतर्गत रखा गया था, तो काफी लोग वहां पधारे। तो ये जो श्रेय है, ये श्रेय हमारे धर्म का जो है, ये है हमारे बाप दादे के ऊपर जाते हैं, जिन्होंने हम सब के ऊपर वो संस्कार डाले, हम लोग के अंदर में संस्कार डाले और अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना भाषा भेषा और भूषा को बता करके हम वो जो सूरीनाम में अब चौथा या पांचवा पीढ़ी अब चल रहा है। तो ये था एक छोटी सी संकेत इस विषय पर, और ना कि 150 वर्ष पहले, लेकिन आज तक भी साउथ अमेरिका में सूरीनाम सिर्फ एक देश ही है जो अपना जहां जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं लोग, जब जहां की अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना धर्म, अपना भाषा, अपना भेषा और भूषा सब अभी कायम रखे हुए हैं। ताकि ये भी इस बात को प्रेसिडेंट मोदी जी ने कई साल पहले वो गए थे सूरीनाम और यहाँ हॉलैंड में रुक करके उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप जानना चाहते हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो सूरीनामी लोग से आप मिलें, सूरीनाम से जो है आप जाकर देखें कि हमारी क्या है। बाकी अन्य देश जो आसपास में है वहां तो संस्कृति और सभ्यता तो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन सूरीनाम एक ऐसा देश है जहां जैसे बाप दादे पहले आए थे वहां ही ऐसे सब लोग ऐसे कर रहे हैं। और सो क्योंकि भारत का उन्होंने एक एक उदाहरण दिया कि आजकल के जो माँ बाप हैं तो अपना मातृभाषा छोड़ करके, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो भाषा को छोड़ करके इंग्लिश भाषा में बच्चे से बात करते हैं। तो वहाँ हमारी जो संस्कार है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता है, उसमें जाकर लुप्त हो जाता है। और यहाँ तक इसी संकेत से अपना वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अब ये अवसर हमको प्रदान किए। 5 जून को तो 150 साल हो गए हैं जो भी हमारे पुरखे श्री राम को ढूंढने के लिए, श्री राम को पाने के लिए अपना देश छोड़ करके वहां पधारे। और ये बड़े गर्व के बात है कि हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा दृढ़ता अभी तक बना रहे और बना रहेगा, यही भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।
1: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने अमृतवाणी से हम सबको अपना संदेश रखे, और ख़ास करके ये संदेश है कि भारत से अभी हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि नंदेश्वर स्वयं भारत से जाकर के सूरीनाम में विराजे हैं। तो हम कार्यक्रम के और अपने समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा ये रखता हूँ कि कार्यक्रम में ज़रूर कुछ न कुछ संदेश आपके मिले होंगे।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे और सहयोग दिए पंडित सूरज देवराज जी, जो खरगोपुर और भारत से हमारे साथ जुड़े, और हॉलैंड से पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने ओर से अपना संदेश रखे। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश जरूर आपके पास पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मैं हूँ संजय और सभी को एक नमस्कार।